सुप्रभात, नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। आज का दिन है बुधवार, शक संवत 1948, भाद्र माह की 25 तारीख और अंग्रेजी वर्ष 2026 सितंबर महीने की 16 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:59 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं सुवर्णा स्वागत करती हूँ आज की हमारी पहली सभा में।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमरीका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोतो, आइए एक बार नजर डालते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीत, फिर 6:30 पर आप सुन पाएंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्मी गाने, 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप सुन पाएंगे आज का दिन पर आधारित कुछ ऐतिहासिक बातें, इसके पश्चात 7:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम, 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रभात, देशभक्ति गीतों का आनंद आप ले पाएंगे 8:15 पर, 8:30 पर आप सुन पाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

सुरु की रंगोली कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंचलिक बातुरी। 9:15 से आरंभ होगा स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम, जिसमें आप सबसे पहले सुन पाएंगे खेलमा भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे डेंस होम जॉन नेबॉम और उनके साथी। रंगखोल कार्यक्रम के तहत लोग गीतों का आनंद आप ले पाएंगे 9:25 पर। गायक कलाकार रहेंगे ललदर थांग रंगखोल और उनके साथियों की आवाज़ में। 9:35 पर पेश करेंगे जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत जयंतिया भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे एबुरवास्टिंग लाकियंग और उनके साथी। 9:45 पर आप आनंद ले पाएंगे बियते कार्यक्रम के तहत बियते आधुनिक गीत। गायक कलाकार रहेंगे ललपार लिमी नम्पुई और उनके साथी।

सुबह 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती का कार्यक्रम। 12 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। फिर दिन 12:05 पर आप दोबारा आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। 1 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फिर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन पाएंगे विविध भारती का कार्यक्रम। समय रहेगा 1:05। 2 बजे आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज़। फिर 2:15 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। 2:30 पर आप फिर से सुन पाएंगे विविध भारती का कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

चार बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। 4:05 से आप फिर आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। ये थी आज की पहले सभा के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, शुरू करते हैं आज की पहली सभा के कार्यक्रम और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत।

दोस्तों आप आनंद ले रहे थे कुछ भक्ति गीतों का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोता अभी आप आनंद ले पाएंगे कुछ विमेन सेंट्रिक फिल्मी गानों का और इसमें आप सबसे पहले सुन पाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: आप सुन रहे थे कुछ महिलाओं पर आधारित विमेन सेंट्रिक गाने, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 से अधिक के व्यापारी लेन देन पर ही लागू रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदर राजन ने लिखी है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में योगदान की जानकारी देती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों और कमजोर लोगों सहित और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 करने की घोषणा की है। ये निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ये पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाई कुंडा में बनाए जाएंगे। इन चारों हवाई अड्डों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच उड़ान योजना के अंतर्गत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर 23 सितंबर को कोलकाता में हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री KR नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। अभ्यास सत्र उत्तराखंड के औली प्रशिक्षण केंद्र और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी और अधिक सुदृढ़ करना है। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकारों को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर करीब 200 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमलों में राजधानी के पेट्रोल पंप के अलावा कई क्षेत्रों में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिजरान की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को बचा लिया गया है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने विजयी लक्ष्य 15 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं पोएम ऑफ द डे।
2: पहली बूंद, लेखक है गोपाल कृष्ण कोल। पहली बूंद, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन को ले अंगराई। धरती के सूखे अदरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रुमावली सी हरी धूप फुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर बजा नगारे जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों सा ये अंबर काली पुतलियों से ये जलघर करुणा विजलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई, भूरी धरती शस्य श्यामला बनाने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई।
0: श्रुतो, ये कविता कहा है जयश्री देव ने। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज का दिन। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं आज के दिन की इतिहास की विशेषताओं के बारे में। इसके पश्चात हम जानेंगे उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। साथ ही उन विशेष व्यक्तियों के नाम हम जानेंगे जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओ, सबसे पहले जानते हैं आज के दिन के इतिहास की विशेषताओं के बारे में। मेक्सिको की स्वतंत्रता को आज के दिन 1821 में मान्यता मिली। ब्रिटेन में 1861 को पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने की शुरुआत। सोवियत संघ ने 1967 में पूर्वी कजाख में परमाणु परीक्षण किया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को 2008 में विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। दुनिया भर के समक्ष भारत का एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को 2009 में ब्रिटिश पुरस्कार मिला। फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा 1848 में आज ही के दिन खत्म की गई। अब जानते हैं उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। ब्रिटिश लेखक, कवि और नाटककार अल्फ्रेड नोइस का जन्म 1880 में हुआ।

स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह का आज के दिन 1882 में जन्म। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त परिषद का जन्म 1893 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री और गायिका एम एस सुबलक्ष्मी की जन्म आज के दिन 1916 में हुआ। मच्छरों से फैलने वाली घातक बीमारी मलेरिया की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रोनाल्ड रोस का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का जन्म 1968 में हुआ। भारतीय अभिनेता सुशील आनंद का जन्म आज के दिन 1977 में हुआ।

हम जानते हैं विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका निधन आज के दिन हुआ। जहानारा बेगम का निधन आज के दिन 1681 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर तथा वर्ष 1936 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रतियोग कुलपति ज्वाला प्रसाद का निधन 1944 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक AB तारापोर जी का निधन 1965 में हुआ। भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5 सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल अर्जन सिंह जी का निधन आज के दिन 2017 में हुआ।

सर्जरी के विशेष तकनीकों और उपकरणों की सहायता से किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, हृदय रोगों की समय पर पहचान और उपचार के महत्व को समझाना तथा आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देना है।

श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों की रक्षा करती है। 16 सितंबर को ये दिवस मनाने का एक विशेष कारण है। वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करना था।

श्रोता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आज मानव जीवन और समाज के विकास के महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। आधुनिक युग में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार, परिवहन और उद्योग जैसे लगभग हर क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक का योगदान है। इसी महत्व को समझने और विकासशील देशों में विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक केवल आधुनिक सुविधाओं का माध्यम नहीं बल्कि सतत और समावेशी विकास के महत्वपूर्ण साधन है। श्रोता, भारत की समृद्ध संगीत परंपरा में अनेक महान कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान बनाई है। ऐसे ही महान हस्तियों में से मदुराई षणमुखा वादिवु सुबलक्ष्मी, जिन्हें प्रेम से एमएस सुबलक्ष्मी कहा जाता है, का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। उनकी जयंती भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अनेक अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर है। श्रोताओ, एमएस सुबलक्ष्मी भारतीय संगीत जगत की ऐसी महान विभूति थी जिनके मधुर आवाज और संगीत साधना आज भी

लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को विश्व भर में सम्मान दिलाया। श्रोताओं, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातें। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए आप आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का, और सबसे पहले आप सुन पाएंगे कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: दोस्तों, आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोता, अभी आप सुन पाएंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम जिसमें साक्षात्कार रहेंगे प्रांजल त्रिपुरा और साक्षात्कारता रहेंगी अंकिता पॉल।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफलॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा युवा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते बुधवार सुबह 7:30 पर। श्रोताओं, जिंदगी में कुछ सफर हम खुद प्लान करते हैं और कुछ सफर बस एक छोटी सी शुरुआत से अपने आप बनते चले जाते हैं। बचपन में की गई एक सिंपल सी चॉइस कब फ्यूचर में हमें एक बिल्कुल अलग पहचान तक ले जाएगी, शायद ये हम कभी सोच भी नहीं पाते। तो आज की हमारी बातचीत भी एक ऐसे ही सफर से जुड़ी है जहां एक यंग बॉय का चेस से शुरू हुआ कनेक्शन आज एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन तक पहुंच चुका है। मिस्टर प्रांजल त्रिपुरा, वो डिमा हसाओ से इंटरनेशनल फिडे क्लासिकल रेटिंग अचीव करने वाले फर्स्ट प्लेयर बने हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी, उनके एक्सपीरियंसेस और उनके आगे के सपनों के बारे में। तो सबसे पहले प्रांजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो पे।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप जरा अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए।
1: तो मेरा नाम प्रांजल त्रिपुरा है, मैं लोअर हाफलोंग से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना क्लास 10th यहीं से कंप्लीट किया है, कवेनेंट हाई स्कूल से। और मैंने क्लास 12 का पढ़ाई अपना कसा डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया है।
0: तो अभी जैसे आपने अपना मैट्रिक

0: ग्रेजुएशन यहाँ से हाफलोंग से कंप्लीट किया है, फिर आपका जो 10+2 है वो आपने काछार डिस्ट्रिक्ट से पूरा किया है। तो चलिए अभी चलते हैं आपकी जो चेस की जो जर्नी है उसकी तरफ हम थोड़ा सा चलते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो ये चेस की जर्नी है वो एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई।
1: एक्चुअली चेस का जो जर्नी था वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में स्टार्ट हुआ था।
0: जी
1: मैंने कभी बचपन से सोचा नहीं था कि मैं चेस के बारे में या फिर चेस पे आगे जाऊंगा। तो एक्चुअली मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने नीट के बारे में सोचा था, जिसके लिए मैं सिलचर जाके 1 ईयर तक रहा। एंड उसमें मेरा मतलब उतना एक्सपेक्टेड वे में मार्क्स नहीं आया था, जिसके वजह से मैं क्वालिफाई कर पाऊँ नीट्स। तो उस टाइम पे मैं एक एंगल पे बहुत डिप्रेस हो गया था, जिसके वजह से मतलब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था क्या करूँ क्या नहीं। तो उसके बाद मैंने समय रैना का स्ट्रीमिंग वगैरह देखना स्टार्ट किया, तो उसमें
0: जी
1: वो चेस वगैरह खेलते थे, तो वहाँ से देख के मुझे चेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। वहाँ से मैंने चेस के बारे में थोड़ा मतलब पता किया कि कैसा होता है कैसा नहीं, और वहीं से मैंने मतलब चेस खेलना स्टार्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे और वीडियो देखा और मतलब सीखा चेस कैसा चलता है कैसा नहीं। तो उसके बाद मतलब चेस पे और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे टूर्नामेंट्स वगैरह खेला एंड वो वीडियो रेटिंग अचीव किया मैंने।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है ये, और मैं आपको कांग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूँगी इसके
1: थैंक
0: लिए।
1: यू वेरी मच।
0: जी तो आपने जैसे अभी कहा है कि ये जो आपका चेस के प्रति जो इंटरेस्ट है ये अचानक से डेवलप हुआ है, आपने यूट्यूब वगैरह से देख के कुछ सीखा है, कहीं इंटरेस्ट डेवलप किया है, तो इसको लेके जो सीरियसली एक परस्यू करने के लिए इसका जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिला।
1: तो मैंने जैसे बोला कि मैंने स्ट्रीमिंग वगैरह देख के वो चेस के अंदर घुसा था, बट उसके बाद मतलब जब मैं धीरे धीरे खेलता गया तो मुझे चेस पे और ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता गया, कि और लगा कि मुझे नहीं, मैं चेस पे कुछ कर सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पे एक डिमासो पे एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था चेस का, जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट भी किया था
0: जी
1: और वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं खेल सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो वही सोच के जो यहाँ का एक मतलब चीफ आर्बिटर है हम लोग का यहाँ दिमासाओ का, जो फर्स्ट नेशनल आर्बिटर है सर रोनित थे, उन्होंने मतलब बताया कि वो गुवाहाटी पे जाके एक टूर्नामेंट था, तो गुवाहाटी पे जाके भी मैंने टूर्नामेंट खेला था। वो भी इंटरनेशनल ही था, बट उस टाइम पे मैं रेटिंग अचीव नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था, बट फिर
0: जी
1: अगरतला पे गया एंड फाइनली वो रेटिंग मिला मुझे।
0: जी जी तो इस पूरी जर्नी में जो आपने ये जब से शुरू किया है, इस पूरी जर्नी में आपको किसने मोटिवेट किया है, किसने इंस्पायर किया है आपको।
1: पूरी जर्नी में मोटिवेशन मुझे मेरे मम्मी और मेरे दादी है, उन लोगों ने तो बहुत सपोर्ट और मोटिवेट किया है। उन लोगों ने मुझे आज तक कभी रोका नहीं है कि तुम ये मत करो या तुम नौकरी करो या कुछ, ऐसा कुछ रोका वोका नहीं है मुझे।
0: जी
1: उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और एक स्पेशल आदमी है जो जिसको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसने बहुत हेल्प किया है। स्पेशली जो मेरा वो अगरतला वाला जर्नी था, उस मतलब उसमें उतना फाइनेंशियली नहीं था मेरे पास कि मैं जा पाऊँ या फिर वहाँ पे जाके स्टे करने का थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस उठा पाऊँ। तो उसने मतलब सपोर्ट किया, उसने बोला कि तू जा मैं देख लूँगा, वो सब बोल के मतलब एक सपोर्ट अलग वे में सपोर्ट किया, और
0: जी
1: फाइनेंशियली भी और मेंटली भी बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर जाने के बाद।
0: जी तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो ये जर्नी है इसमें आपके फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, वो लोग
1: जी
0: आपको
1: जी
0: बहुत सपोर्ट करते हैं।
1: जी
0: जी तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि डिमासा से जो चेस परस्यू करते हुए ये इंटरनेशनल फीडर रेटिंग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो मैच आपके लिए कैसा था।
1: जी वो मैच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब हेक्टिक था, क्योंकि मैं पहला राउंड हार गया था वहाँ पे जाके। तो बहुत डिमोटिवेट हो गया था, डर गया था कि मुझे रेटिंग मिलेगा कि नहीं। एक्चुअली मैं ये रेटिंग के लिए ही गया था वहाँ पे, बहुत सपना देखे गया था कि रेटिंग मिलेगा। तो जाके मतलब पहला राउंड ही हारने के बाद मुझे मतलब बहुत डिमोटिवेट हुआ कि मैं खेल पाऊँगा या रेटिंग मिल पाएगा कि नहीं।
0: जी
1: तो मैंने मतलब वो डिमोटिवेशन को अपना अंदर जाने नहीं दिया। मैंने सोचा कि नहीं चलो एक मैच हारा और भी 8 मैच बाकी है, तो उसमें मैं कुछ कर लूँगा। तो उसके बाद मैं बैक टू बैक ड्रॉ करते गया, विन करते गया। उसके बाद मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया कि मुझे मिल जाएगा रेटिंग।
0: जी जी तो ये जो आपने इंटरनेशनल क्लासिकल रेटिंग जो आपने बनाया है, ये जो जर्नी है ये आपके लिए क्या मीनिंग रखता है, क्योंकि आप पहले नहीं सोचे थे कि आप कभी चेस के फील्ड पे आओगे, तो ये जो एक ऐसा मोड़ है जहाँ से आपको एक पहचान मिल रहा है, ये आपके लिए क्या मीनिंग रखता है।
1: एक्चुअली डिमासाओ पे उतना वो नहीं है, चेस का उतना क्रेज़ नहीं है, फिर भी मतलब डिमासाओ से कोई एक इंटरनेशनल लेवल तक रेटिंग मिलना वो भी बड़ा बात है।
0: जी
1: तो उसके लिए मैं बहुत प्राउड भी फील करता हूँ कि डिमासाओ का कुछ तो नाम किया मैंने, अब जिस जगह पे मैंने जन्म लिया उस जगह पे मैं कुछ तो नाम वाम किया है मैंने। और चेस के बारे में मैंने उतना कुछ सोचा नहीं था बचपन से, क्योंकि चेस मैंने बहुत लेटली शुरू किया है। बचपन में लोग शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम लोग का वर्ल्ड चैम्पियन है जो 18 ईयर्स का है, तो मैंने एज़ कम्पेयर टू देम बहुत मतलब लेटली शुरू किया 21 ईयर्स पे, फिर भी मैंने खेल के एक अचीव कर लिया. और मेरा चेस खेलते हुए ज़्यादा शायद से एक साल भी नहीं हुआ है, इवनली 6-7 मंथ्स ही हुआ है चेस खेलते हुए, फिर इतना जल्दी मैंने अचीव कर लिया, तो वो एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए.
0: जी. तो जैसे अभी हम कह सकते हैं कि आपकी

0: जर्नी अभी बस शुरू हुई है, आगे की आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। हो सकता है आप इस फील्ड में और आगे बढ़े, आपका और नाम हो, लेकिन जैसे आज जब आप एक चेस प्लेयर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, क्या बचपन में कभी सोचा था कि एक दिन आपको, मतलब ऐसा तो आपने बोला ही है हमें कि अनएक्सपेक्टेड आया है चेस
1: जी
0: आपके लाइफ में, तो ऐसा कभी सोचा था कि ऐसे कोई चेस चीज के नाम से आप जाने जाएंगे?
1: नहीं, मैंने बचपन से तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि बचपन से चेस के साथ मेरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हुआ था। जैसे मतलब मैंने बताया कि नीट के बाद मैंने वो स्ट्रीमिंग वगैरह देख के इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बाद चेस का मतलब थोड़ा बहुत पता चला एंड उसके बाद ही मैं चेस में आगे बढ़ा। उसके पहले मेरा इतना कुछ नहीं था कि मैं चेस पे आगे बढ़ूंगा। चेस के बारे में एक्चुअली पता भी नहीं था मुझे क्या होता है क्या नहीं।
0: जी, तो जैसे आपकी बातों से ना हमें ये पता चला है कि आप डिमोटिवेट हुए हैं कई बार आपके लाइफ
1: जी
0: में अब तक, तो आपने अपने फेलियर को बहुत अच्छे से हैंडल करके खुद को आगे लाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग हैं ना, एक बार फेल हो जाते हैं तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: जी फेलियर को मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं है कि फेल होके मैं डिमोटिवेट या फिर दुखी नहीं हुआ हूँ। बहुत हुआ हूँ, कभी कभी महीने एक दो महीने तक भी हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं था कि फेलियर को लेके ही मैं बैठ गया, उसको ही लेके मैं मतलब कुछ नहीं कर पाऊँगा सोच लिया था, ऐसा नहीं था। मैंने फेलियर हुआ मेरा, मैं डिमोटिवेट था बहुत महीने तक, बट उसके बाद सोचा कि ऐसे बैठ के भी तो कुछ फ़ायदा है नहीं, कि मैं
0: जी
1: बैठा ही रहूँगा तो और क्या उखाड़ पाऊँगा लाइफ पे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो करना होगा लाइफ में। तो उसके बाद जब मैं देखा कि मैं चेस में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो सोचा कि चेस पे आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ करते हैं।
0: जी, तो ये जो आपने फेलियर को, अपना जो डीमोटिवेशन है उसको आपने अपना एक हथियार बनाया है आगे आने का, तो इस चेस फील्ड में आने के बाद आपको अपने पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस देखने को मिला है?
1: चेस फील्ड पे आने के बाद पर्सनैलिटी में ज़रूर बहुत डेवलप हुआ है मेरा, कि चेस पे चेस ऐसा गेम है जिसमें हम लोग मतलब पेशेंस सीखते हैं और मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें। क्योंकि हम लोग को पता है कि चेस में अगर एक मूव भी हम लोगों ने गलत खेल दिया या कुछ गलत सोच लिया तो बहुत ख़राब हो सकता है। जैसे कि मेरा ये टूर्नामेंट पे भी मैंने बोला था कि मैं पहला मतलब मैच हारा था, तो मतलब बाद में मैंने जब एनालाइज किया या फिर मैं जब खेल रहा था तब मुझे पता था कि मैं विनिंग पे था, मैं जीत रहा था वो पहला राउंड, बट
0: जी
1: उसके बाद मेरा एक छोटा सा गलती था जिसकी वजह से मैं वो पूरा राउंड हार गया, जिसकी वजह से मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ। तो चेस ने मुझे मतलब एक पेशेंस सिखाया कि शांत रह के तुम सोच सकते हो कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, डिसीजन तुम एक ले सकते हो कि कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा होगा कौन सा तुम्हारे लिए गलत होगा। तो हाँ, चेस ने बहुत मतलब पर्सनैलिटी मेरा डेवलप किया है।
0: जी, तो अभी आपके अपने इस जर्नी को आप होप सो एंजॉय कर रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल, बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ।
0: जी, अब जरा आप मुझे ये बताइए कि जैसे पढ़ाई को लेके, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आप BSc के फील्ड पे आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अपना चेस का भी ये संभाल रहे हैं, होप सो आप ये आगे जाए और भी, मैं जानना चाहूंगी कि चेस के अलावा आपके क्या हॉबीज है?
1: चेस के अलावा मुझे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह बहुत पसंद है,
0: जी
1: प्लस सिंगिंग वगैरह भी बहुत पसंद है। म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं बचपन से ही। और हाँ, मैं ट्यूशन भी वगैरह पढ़ाता हूँ, तो टीचिंग करना भी एक एंगल में मुझे बहुत पसंद है, और स्टडीज़ मुझे बहुत पसंद है,
0: जी,
1: वो सब है।
0: तो आपने कभी सोचा है कि आपके जो हॉबीज़ है ये सब, सिंगिंग के फील्ड, फिर टीचिंग के फील्ड, इन हॉबीज़ को एक चांस दिया जाए आगे बढ़ने के लिए?
1: जी, मैंने ज़रूर सोचा है कि टीचिंग वगैरह पे भी मैं थोड़ा आगे अपना मतलब बिल्ड करूँ कुछ, और सिंगिंग भी थोड़ा परस्यू करूँ आगे जाके।
0: जी
1: बट अभी करेंटली चेस में जब अच्छा कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि चेस में ज़्यादा मतलब फोकस करूँ और दूसरों को भी रखूँ।
0: जी तो अभी ये जो चेस को लेके अभी आप चल रहे हैं और अपने हॉबीज को भी आपने कहा आप चांस देना चाहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फ्यूचर में किसी और फील्ड में भी आप खुद को एस्टेब्लिश्ड देखना चाहते हैं?
1: जैसे मैंने बोला कि मैं BSc कर रहा हूँ, तो जूलॉजी ऑनर्स से लेके कर रहा हूँ, तो चाहता हूँ कि जूलॉजी ऑनर्स से मुझे कुछ मतलब एक अच्छा खासा नौकरी वगैरह मिले, जिससे मैं अच्छा इनकम हो पाए,
0: जी
1: फैमिली को
0: जी
1: अच्छा सेटल कर पाऊँ, वो सब।
0: जी, तो ये हर किसी का एक होता है कि खुद एक सेटल होके अपने फैमिली को सपोर्ट करे,
1: जी
0: क्योंकि अपने चैलेंजेस के टाइम पे अब हमारी फैमिली हमारी बैकबोन बनती है।
1: जी
0: जी, तो हमने आपके चेस जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ बात किया है और मैं अभी एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि ये एक थोड़ा पर्सनल सवाल हो सकता है कि ये जो आपका सरनेम है त्रिपुरा, तो ये सरनेम काफ़ी अनकॉमन है, इस सरनेम के ओरिजिन के बारे में आपने कभी अपने फैमिली से सुना है कुछ?
1: जी ये जो त्रिपुरा सरनेम है, वो मेरा मतलब एक्चुअल सरनेम नहीं था।
0: जी
1: मतलब पहले जो मेरे दादाजी थे वो त्रिपुरा पे रहते थे, तो हम लोग का उस टाइम पे टाइटल दे था,
0: जी
1: तो उस टाइम पे वो त्रिपुरा से पहली बार मतलब लामडिंग आए थे। तो लामडिंग पे उन्होंने मतलब पहले तो आप लोग को पता है कि मतलब जॉब वगैरह ऐसे ही मिल जाता था,
0: जी बिल्कुल
1: तो उस टाइम पे उनके दोस्तों ने बोला था कि तू त्रिपुरा से आया है, तो ऐसे ही मजाक मजाक में बोला कि तू टाइटल भी त्रिपुरा ले, वैसे ही बोला था। तो उन्होंने उस टाइम पे मतलब मजाक मजाक में हंसी मजाक में दोस्तों के साथ लिख दिया त्रिपुरा। तो लिखने के बाद वो मतलब चलते गया, और किसी ने मतलब हम लोग के मतलब फर्दर जनरेशन में किसी ने सोचा नहीं था कि वो चेंज करे।

0: चेंज नहीं किया, वही रह गया हम लोगों का
1: जी
0: एक्चुअली, देह से हम लोग का वो त्रिपुरा रह गया, चेंज नहीं किया किसी ने। और
1: जी तो जैसे अगर मैं पूछूं कि ये मजाक मजाक में एक सरनेम बन गया है, इस सरनेम के और भी लोग देखने को मिलते हैं?
0: जी, सरनेम के और भी लोग हैं त्रिपुरा पे जो त्रिपुरी ट्राइब शायद बोलते हैं, उन लोग का
1: जी
0: भी त्रिपुरा टाइटल है बहुत।
1: जी तो आपका जो ये जर्नी है ना, अभी चेस का जो आपका जर्नी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है आपने
0: जी
1: शुरू किए, और अब तक आपने एक जो भी हो एक अचीवमेंट आपने किया है, आप और भी आगे जाए, तो इन सब में जैसे आपने कहा फैमिली का तो आपको सपोर्ट है ही,
0: जी
1: क्या आपके दोस्तों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है?
0: दोस्तों का सपोर्ट मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ कि मतलब सबको मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं होता दोस्तों के साथ, मेरा ज़्यादा दोस्त भी नहीं है इतना, तो जितने भी थे उन लोगों ने मतलब सपोर्ट तो किया था एक एंगल पे कि बोला था कि तू कर पाएगा देख के कि हाँ चेस अच्छा खेल लेता है।
1: जी
0: एंड अभी जब मैंने रेटिंग अचीव किया उसके बाद दोस्तों का मतलब बहुत सपोर्ट आ रहा है, जैसे मतलब जो जो पहले बात भी नहीं करते थे वो लोग अभी कांग्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात बात कर रहे हैं।
1: जी तो जैसे आपने कहा है ना ये कि चेंजेस आया है, कि अभी का जो आपने अचीवमेंट किया है इससे आपको एक पहचान मिली है, हर कोई आपसे बात कर रहा है, तो क्या लाइफ में कभी ऐसे लेफ्ट आउट फील हुआ है कि हाँ लोगों के बीच में रहने के लिए एक पहचान बनना बहुत ज़रूरी है?
0: जी ऐसा बहुत बार फील हुआ है। मैं एक्चुअली पहले जब मैं बोला था कि मैं डिप्रेस रहता था उस टाइम पे, मैं मतलब खुद को आइसोलेटेड करके रखता था सबसे, मतलब बाहर की दुनिया से मतलब अकेला रहता था, बाहर जाता था तो मतलब लोग बोलते थे मतलब एक एज हो गया उसके उस पर भी मतलब कुछ जॉब वगैरह नहीं है, तो लोगों का बहुत होता है कि इतना एज के बाद भी तुम कमा नहीं रहे, वैसा सुनने को मिलता था, तो उस वजह से मैंने बहुत आइसोलेटेड कर दिया था खुद को।
1: जी
0: एंड अभी जब मुझे रेटिंग मिलने के बाद सब मतलब कांग्रेस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं सब, तो मुझे अच्छा लग रहा है एक चीज़ की हाँ लाइफ में एक पहचान बनाने के लिए हम लोग को मतलब कुछ अचीव तो करना पड़ेगा जिसके वजह से अपने लोग भी मतलब पहचाने।
1: जी ये बहुत सच बात है, और हर किसी में ये एक जुनून होना चाहिए
0: जी
1: कि मुझे पहचान बनानी है। तो प्रांजल जी, तो अभी हम हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं, तो आखिर में मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी यंग लिसनर्स हैं जो आपकी एज के हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने हॉबीज को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हैं या चेस जैसे फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं?
0: जो मतलब यंग जनरेशन जो आ रहा है, जो मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि वो मतलब कुछ हॉबीज़ होता है उन लोगों का कि ये कर पाएगा कि नहीं, मतलब बहुत थिंकिंग चलता है दिमाग में जब स्टार्टिंग फेज में, बहुत दिमाग में थिंकिंग चलता है कि हॉबी तो सोच लेते हैं बट उसको कर पाएंगे कि नहीं वो लेके बहुत थिंकिंग चलता है दिमाग में। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में कुछ हॉबीज़ है तो उस पर मतलब एक्सपेरिमेंट करिए, आप ट्राई करिए कुछ मतलब आगे बढ़ने का।
1: जी।
0: अगर आप सोच के बैठे रहोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे मैंने भी बोला था कि चेस मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ में आएगा,
1: जी
0: बट बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आया था वो चेस। आने के बाद मैंने बस ऐसे ही हॉबी के हिसाब से खेल के नहीं रख दिया, मैंने उसको मैंने आगे लेके जाने का सोचा मैंने। तो यंग जनरेशन को यही मैसेज है कि वो लोग अगर कुछ उन लोगों का हॉबीज़ है तो वो लोग बिना डरे अपने पेरेंट्स से बात करें और उस हॉबीज़ को परस्यू करें, क्योंकि हॉबीज़ को परस्यू करेंगे तब जाके उन लोग को पता चलेगा कि उन लोग के अंदर क्या टैलेंट है या नहीं। और कोई अगर चाहता है कि चेस में करियर बनाए तो उन लोग को लगता है कि चेस में कुछ स्कोप है नहीं, चेस में कुछ होता है कि नहीं उन लोग को पता भी नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि चेस में बहुत स्कोप है। जैसे कि जो अगर चेस के साथ मतलब जुड़ा होगा उन लोग को पता है कि बहुत सारा टूर्नामेंट जैसा है जिसमें मतलब बहुत हाई लेवल स्केल में पे करता है वो लोग टूर्नामेंट जीतने के बाद। और चेस में अगर तुम्हें एक टाइटल वगैरह भी मिल जाता है, जैसे कि बहुत सारा टाइटल होता है कैंडिडेट मास्टर, फिडे मास्टर, वो सब अगर मिल जाता है तो तुम्हें एक मतलब समाज में एक अच्छा पहचान तो मिलेगा ही, प्लस तुम्हें बहुत सारा टूर्नामेंट फ्री में भी खेलने को मिलेगा और तुम्हें मतलब अच्छा खासा पे भी करेंगे वो लोग कि खेलो तुम लोग आके हमारे यहाँ से।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है अब तक की सुन के, और आपके आगे की जो फ्यूचर की जर्नी है उसके लिए बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से
0: ये थैंक यू वेरी मच।
1: जी। और हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो पे आए, हमसे इतनी सारी बातचीत की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए आपका
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू। आप मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने बुलाया, अपने मतलब चेस को इम्पोर्टेंस दिया है हाफ लॉन्ग का ऑल इंडिया रेडियो ने, तो
1: जी
0: मुझे अच्छा लगा।
1: जी तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से एक बात जरूर सामने आती है कि कभी कभी एक छोटी सी शुरुआत हमें ऐसी जगह तक ले जाती है जहां पहुंचने का हमने शायद कभी सोचा भी नहीं हो। हमारे यंग गेस्ट की जर्नी अभी जारी है और आगे वो किस मुकाम तक पहुंचते हैं ये देखना भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी के साथ मैं अंकिता आपसे विदा लेती हूँ, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें साक्षात्कार थे प्रांजल त्रिपुरा और साक्षात्कारता थी अंकिता पॉल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोता, अभी आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का, और अभी आप सबसे पहले सुन पाएंगे किशोर कुमार की आवाज़ में

0: दोस्तों, आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0% व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR

0: की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त यूपीआई लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
7: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान

0: छात्र कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव।

0: सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, एआई और ड्रोन से बदले का भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका मेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने कहा लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोता अभी आप सुन पाएंगे कुछ देशभक्ति गीत।

ಸಮನಯ

तो दोस्तों इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ देर में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग,
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलोंग केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं शुरू की रंगोली कार्यक्रम के तहत तलत महमूद के कुछ चुनिंदा गाने।

तलत महमूद के इस गीत के साथ आज हमारा शुरू की रंगोली कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब से कुछ समय में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआरांचलिक बातोड़ी।

0: श्रोता, आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन रहे थे पुआर आंचलिक बातोरी।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के ये हाफलोंग केंद्र हैं। चलिए शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम, जिसमें आप सुन सकते हैं खेलमा भक्ति गीत। गायक कलाकार है जेंसुम जॉन नेबॉम और उनके साथी।

आप सुन रहे थे खिलमा भक्ति गीत डेंसोम जॉन नेबॉम और उनके साथियों की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब पेश है रांखोल कार्यक्रम। इसके तहत आप सुन पाएंगे कुछ लोकगीत जिसमें गायक कलाकार है ललदर थांग रांखोल और उनके साथी।

दोस्तों, आप आनंद ले रहे थे रांखोल लोक गीतों का, ललदर थांग रांखोल और उनके साथियों की आवाज में। यह आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोता, अब आप आनंद लेंगे जयंतिया कार्यक्रम के तहत कुछ भक्ति गीतों का। आवाज रहेंगे एबोरबा स्टिंग लकियंग और उनके साथी।

एबोरबास्टिंग लकियांग अरुण के साथियों के गाए भक्ति गीतों के साथ ही आज का जयंतिया कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफलोंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं बीते कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे कुछ बीते आधुनिक गीत। आवाज होंगे ललपरली मी नामपुई और उनके साथी।

0: आप आनंद ले रहे थे कुछ बेहद आधुनिक गीतों का। गायक कलाकार थे लल परलिमी नामपुई और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। और इसी के साथ ही मुझे यानी सुवर्णा को दीजिए इजाज़त। अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: सेल्युलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
1: कमलजीत जी नमस्ते।
2: नमस्कार।
1: आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: अच्छा, आज के माहौल में जब टीवी का बोलबाला है और आप करीब हर चैनल पर नजर आते हैं, तो कैसा लगता है ये सब देखकर?
2: बड़ा अच्छा लगता है सविता जी, क्योंकि कलाकार अगर काम अच्छा कर रहा हो और वो ऑडियंस उसे सराहती है तो कलाकार का उत्साह बढ़ता है, वो और भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो ये सब अच्छा लगता है कलाकार को।
1: अच्छा, आप तो अभी टीवी के स्टार बन गए, फिल्मों में नाम तो आपका बहुत हुआ बतौर हीरो, लेकिन कभी ये सोचकर मलाल नहीं होता कि मैं स्टार नहीं बन सका?
2: देखिए, सिनेमा से मुझे बहुत इश्क है, अब भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो सिनेमा से तो मुझे बहुत लगाव है, इश्क है, मोहब्बत है, लेकिन वहाँ न बन सका इसका मलाल मुझे नहीं है। अब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है कि मैं फिर से वापस सिनेमा करने लगूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरी पसंद के रोल अगर मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कोई भी रोल, तो मैं करूँगा।
1: तो इसी बात पे एक गाना हो जाए आपकी पसंद का।
2: ज़रूर।
1: कौन सा गाना सबसे पहले सुनाना चाहेंगे आप?
2: जिन दिनों जब मैं फिल्में किया करता था
1: जी,
2: तो उस ज़माने की एक फिल्म का जो मेरी सबसे पहली ऑलमोस्ट फिल्म थी, शंकर हुसैन, उसमें एक गाना था बड़ा खूबसूरत, लता जी ने गाया था, अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियां धड़कती हैं।

0: आपने संघर्ष तो खूब किया
1: जी
0: और बहुत समय लगा, मुझे लगता है, पहचान बनाने में। तो ये पहचान आपकी कैसे बनी?
1: के कुछ लोगों की इमारत जो है सबसे पहले बन जाती है, वो दिखने लगती है। कुछ लोग बुनियाद काफ़ी देर तक बनाते रहते हैं, तो मेरे हिस्से में मेरा ख्याल बुनियाद ने काफ़ी टाइम ले लिया। और फिर जब बुनियाद मिली तो उसके बाद लोगों ने काम भी अप्रिसिएट किया और फिर काम मिलना भी बाकायदा शुरू हो गया।
0: मेरे ख्याल बुनियाद की बात निकली तो बुनियाद सीरियल भी आपका काफी हिट हुआ था,
1: जी उसी,
0: उसी
1: हाँ
0: से बात बनी
1: जी
0: ना?
1: जी जी उससे काफ़ी टेलीविजन में काम मिला उसके बाद।
0: अच्छा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या एक अजीब सी बात है कि आपकी फिल्म हिट होती है तो इसका फायदा तो सबको होता ही है, तो क्या सीरियल में भी ऐसा चलन है? क्योंकि चैनलों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप बहुत से सीरियल कर रहे हैं, सांस है, बुनियाद, दरार, किस्मत, फरमान वगैरह,
1: नहीं,
0: तो ये कॉम्पिटिशन को आप कैसे फेस करते हैं?
1: ये सब ऐसा ही है जैसे फिल्मों में होता है। मतलब फिल्में अगर आपकी चलती हैं आपको काम मिलता रहता है, सीरियल आपके चलते हैं, चल रहे हैं, आपका काम अप्रिसिएट हो रहा है तो आपको काम मिलता रहेगा। देखिए बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं,
0: जी
1: आपके पास अगर पहले दो मरीज आएँ और वो आपके हाथों मारे जाएँ तो फिर मेरा ख्याल आपके पास कोई दूसरा मरीज नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, एक्टर की अगर पहली फिल्म या पहले दो तीन सीरियल चल गए तो उस बेचारे को काम मिलता रहता है, वरना उसी डॉक्टर वाला हिसाब होता
0: अच्छा, आपने फिल्में भी बहुत की और सीरियल भी बहुत
1: है।
0: किए।
1: जी
0: शंकर हुसैन फिल्म की आपने, फिर सत्ते पे सत्ता की, अशांति की, माचिस हाल ही में की,
1: जी माचिस हाल में
0: एक शर्त भी फिल्म की थी, और सीरियल तो आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों कर लिए। तो फिल्म और
1: ये आप
0: सीरियल
1: शिकायत कर रही हैं या बता रही हैं, मुझे समझ नहीं आ
0: क्योंकि मैं तो रोज ही जब टीवी
1: रहा।
0: ऑन करती हूँ तो आप ही
1: हाँ
0: आप दिखाई
1: नहीं नहीं
0: देते
1: ऐसी कोई बात नहीं। वो
0: हैं
1: असल में ये कई लोग ये सोचते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो नए चैनल्स आए हैं इसमें प्रोग्राम्स क्योंकि रिपीट होते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत आ रहा है। पर मैं ज़्यादा काम लेता नहीं हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मैं अच्छी तरह निभा सकूँ जिसे।
0: अच्छा, एनीवे
1: हाँ तो क्या कह रही थी आप?
0: फिल्म और सीरियल आप करते हैं इकट्ठे, तो अभिनय में क्या कुछ फर्क होता है? जैसे कि स्टेज और फिल्म में अभिनय का फर्क होता है, इस तरह से सीरियल और फिल्म में भी फर्क होता है
1: नहीं,
0: क्या?
1: अभिनय में फ़र्क थिएटर और सिनेमा में शायद हो और है भी थोड़ा सा, वहाँ पे एक दो सुर ऊपर करना पड़ता है थिएटर
0: लाउड
1: में।
0: होता
1: जी
0: है
1: हाँ थिएटर में,
0: जी।
1: सिनेमा में क्योंकि एक एक आपकी टाइट क्लोजअप में, इतने बड़े क्लोजअप में आपका एक एक नस दिखती है कैमरे को, तो उसमें आपको इतना एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता। ऐसा ही मैं समझता हूँ टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग में कोई फ़र्क नहीं। हाँ डायरेक्शनल टेक्निक्स में फ़र्क हो सकता है भी, क्योंकि ये मीडियम जो टेलीविज़न का है वो क्लोज़र मीडियम है शॉर्ट्स का, लेकिन एक्टिंग के लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ। आप जैसे अपना कैरेक्टर किरदार वहाँ निभाते हैं सिनेमा में, वैसे ही आपको यहाँ पे करना पड़ता
0: ये फिल्म में तो बहुत ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है ना,
1: है। क्यों क्यों हम
0: कैरेक्टराइजेशन
1: लोग टेलीविज़न
0: पर।
1: में नहीं दिखाते? मेरा ख्याल हम लोग टेलीविज़न में ज़्यादा ऑथेंटिसिटी

0: दिखाते हैं,
1: यही बात तो उगलवाना चाह रहे
0: थे। गुस्सा आ गया, गुस्सा दिलवा के है।
1: अच्छा, जब शुरू शुरू में सीरियल बनने शुरू हुए थे तो फिल्मी एक्टर से, माफ कीजिए, छूत की बीमारी समझते थे, कहते थे कि नहीं छोटे से बक्से में कौन अभिनय करेगा सविता जी, अब तो बड़ा एक्टर जो भी है वो सब सीरियल में ही अपने आप को कैश कर रहे हैं। क्या ख्याल आते हैं इस बारे में?
0: देखिए, मेरे ख्याल जो हैं इस बारे में बड़े सीधे और ये हैं, मैं सिनेमा को नंबर वन समझता हूँ, बट टेलीविजन का शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे काम दिया और मेरा किचन चलाया, लेकिन सिनेमा जैसा मैजिक टेलीविजन पर नहीं है और नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेलीविजन जो देखा जाता है वो ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ पे और इतनी 100 डिस्ट्रैक्शन हैं, आपका बच्चा रो रहा है, अभी खाना बनाना है, वो उसने स्कूल जाना है, कल के स्कूल की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है। सिनेमा एक हॉल में देखा जाता है, इट इज़ अ ग्रेट मैजिक, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थिंक सिनेमा इज। तो मेरे लिहाज से अगर मुझे आज कहा जाए सिनेमा और टेलीविजन में कौन सा बेटर मीडियम है, डेफिनेटली सिनेमा है, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल, हर एक को सर्वाइव करना है यहाँ, तो जो सिनेमा में नहीं है वो टेलीविजन में है, जो सिनेमा में बहुत अच्छा जिनका करियर जा रहा है वो टेलीविजन में नहीं आना चाहते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी अच्छी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
0: तो फिर अच्छे से शायर का ही सुनाते हैं
1: जो आपको पसंद हो।
0: गालिब की एक गजल है, मुझे बड़ी पसंद है और जगजीत ने बहुत खूबसूरती से गाई है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक।
1: वाह वाह वाह।

0: कमल जी, पहले एक्टर स्टेज को स्टेपिंग स्टोन बना के फिल्मों में आते थे, मतलब प्रवेश करते थे, और अब उल्टा हो रहा है कि फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं। ये उल्टी हवा कैसे बह निकली?
1: फिल्मों से सीरियल में आ रहे हैं, मेरा ख्याल इसलिए आ रहे हैं जो फिल्मों से निकाले जा रहे हैं उसी में आ रहे हैं। सीधी बात है।
0: निकाले नहीं जा रहे, दोनों जगह काम कर रहे हैं।
1: जिनको काम नहीं मिला, जिनको मैंने वही पहले ही अर्ज किया है कि अगर जो जिसका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा है फिल्म में, वो टेलीविजन में नहीं आना चाहता है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा उसको अपटी बिहेवियर समझा जाए ऐसा भी नहीं मैं समझता।
0: मतलब रोजी रोटी का सवाल है,
1: नहीं रोजी रोटी का नहीं, भाई वो क्यों लेसर मीडियम में आएगा? अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं तो मैं रिपोर्टिंग न्यूज़पेपर के लिए क्यों करूंगा? सीधी बात, अगर मेरा नॉवल बिक नहीं रहा है तो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करूंगा, ये है।
0: अच्छा, स्टार सिस्टम, इसका फिल्म जगत में साम्राज्य है जो लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ ऐसा होता है कि चेहरे बदल जाते हैं, और अब यही बात सीरियल में भी लागू होती है। आपके क्या विचार हैं?
1: वो इसलिए क्योंकि बेसिकली मीडियम जो हैं सारे ये हम मूवी बिजनेस कहते हैं, टेलीविजन बिजनेस है।
0: बिजनेस,
1: जी हाँ। तो जब तक आपके प्रोग्राम बिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेंगे तो चैनल कैसे रन करेगा? तो चैनल नहीं रन करेगा तो वो फिर पूरा विशेष सर्कल है बड़ा। तो इसमें जो एक्टर्स जो थोड़े बहुत ऊपर हैं, टॉप लेवल पे हैं, उनके प्रोग्राम हिट हो गए हैं या उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो और क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो चैनल कहता है कि भाई इन एक्टर्स के साथ बनाओ।
0: मतलब यह ऐसा तो नहीं जो पैसा लगाता है वो बोलता है हमको यही चाहिए, जैसे फिल्मों में प्रोड्यूसर पैसा लगाता है?
1: नहीं नहीं, हाँ तो ऑब्वियसली
0: है ना,
1: जो पैसा लगाता है वो ये सोच के लगाता है कि मुझे पैसा रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न में आएगा पैसा, वापस आएगा, जो लागत है मेरी वो कम से कम वापस वसूल होगी। तो वो कैसे होगी कि पॉपुलर एक्टर को लेंगे आप? पॉपुलर हर जो चीज़ है जो डिमांड में है, जिसे सराहा जा रहा है इस वक्त, पब्लिक उसे चाह रही है, उसे ही आप लेके बनाएंगे ना।
0: अच्छा, जो ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता तो उनको क्या करना चाहिए आपकी राय में?
1: आप देखिए, हमें भी तो काम नहीं मिला था इनिशियली,
0: फिल्मों में भी काम नहीं मिलता और सीरियल में भी काम नहीं मिलता।
1: एक तो
0: कहाँ तो उम्मीद जगी थी कि सीरियल बन रहे हैं, तो जिनको फिल्मों में काम नहीं मिलता उनको सीरियल में भी मिलेगा।
1: देखिए, अपने बारे में ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल है जिंदगी में। जब आदमी यहाँ पे ट्रेन में बम्बई में उतरता है तो वो ये आप उससे पूछें भाई तेरा अपने बारे में क्या विचार है, क्या राय है, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मेरा करियर यहाँ बनेगा और मुझे लगता है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ये कोई कहता है?
0: कोई नहीं कहेगा।
1: तो फिर तो या तो अपने बारे में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आदमी हो, अपने आप को एक साल दे, दो साल दे, ढाई साल दे, तीन साल दे, या फिर बाप बहुत रईस हो समझे ना, जिसे कोई फर्क ना पड़े कि बेटा कर रहा है स्ट्रगल तो करता रहेगा। तो अब

0: ये तो अपने पे निर्भर करता है कि मैं अपने आप को कितना वक्त देता हूँ और मैं कितना, मतलब मुझे कितनी अपने बारे में समझ है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं कहूँ कि यार बस अब बहुत हो गया, लेट अस ट्राई समवेयर एल्स।
1: कमल जी, जिंदगी का सफर तो हमेशा चलता रहता है। जैसे सुख दुख आते हैं, इसी तरह फिल्म सीरियल और सीरियल फिल्म, ये चक्र घूम रहा है, बरसों से घूम रहे। कहीं ये थम गया तो क्या होगा, ये सोचकर कैसा लगता है?
0: हाँ, बहुत डर लगता है। देखिए, हर आदमी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका काम कब अच्छा चलता रहे और कब तक चलता रहे इसका कुछ भरोसा नहीं, तो ये तो हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है हर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी को और हमारे कॉम के लोगों को, यानी एक्टर्स को, कि भाई ये जो इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है, ये कल को ऐसा ना हो कि सब हमारे प्रोग्राम

0: अच्छा, आपकी पत्नी भी तो इसी मीडिया में है,
1: जी।
0: तो आप दोनों अपने इस प्रोफेशन को, अभिनय को किस तरह से एडजस्ट करते हो? कभी प्रोफेशनल जेलेसी का सामना तो नहीं करना पड़ता?
1: नहीं नहीं क्यों, मैं जेलेसी इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी मुझसे बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, तो इसका मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल उसमें जितना सेक्रीफाइस, और मेरा ख्याल औरत जात में जितना सेक्रीफाइस करने की वो है ताकत, इसी वजह से जब से हमारे बच्चे हुए हैं अब तक उसने कोई काम नहीं किया। शी रिफ्यूज टू वर्क, मतलब वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की ग्रोथ में लगाना चाह रही थी। तो अब रिसेंटली उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट अभी साइन किए हैं, पायलट्स किए हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है, मेरा छोटा बेटा आदित्य 5 साल का है, बड़ा सिद्धार्थ, तो ये जब तक छोटे थे तब तक उन्होंने कोई काम लिया ही नहीं, तो इस वजह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई वो बाहर हैं तो घर नहीं है। उसके उसके जहन में घर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे सब सही रहना चाहिए। ये
0: तो ये एक तरह से एडजस्टमेंट कहीं या सेक्रीफाइस
1: नहीं
0: पति के लिए?
1: नहीं नहीं वो जब बहुत छोटी थी मेरी वाइफ अनुराधा, तो उन जब बच्ची थी खुद, तो उनसे पूछा जाता था भाई बड़े होके तुम क्या बनोगी, तो कहती थी मम्मी। तो उसे शुरू से बच्चों का शौक रहा है, घर का शौक रहा है, उसे घर को सजाने का, घर को बनाने का, और बेसिकली शी इज़ अ होम बर्ड।
0: तो इसी एक सुंदर सी बात पे कुछ आपकी पसंद का सुंदर सा गाना,
1: सुंदर सी बीवी के लिए?
0: हाँ, सुंदर सी बीवी के लिए, क्यों नहीं?
1: तो चलिए बीवी की बात चलिए, तो फिर उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनाते हैं।
0: कौन सी फिल्म का?
1: उत्सव का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन क्यों महका।

0: अच्छा, आप जब छोटे थे तो तभी से एक्टर बनना चाहते थे या बड़े होने पर इस तरफ रुझान हुआ? क्योंकि हमारे माँ बाप अक्सर कहते हैं हम अपने बच्चे को बड़े होने पर डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे वगैरह वगैरह।
1: जी हाँ, क्योंकि मैं सहारनपुर का हूँ
0: जी
1: और मेरा ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई अंकल, ना कोई आंटी यहाँ पे बम्बई में थी, तो जाहिर है मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं बम्बई जाकर एक्टर बनूँ। तो सहारनपुर में पढ़ रहे थे, थोड़ा बीच में मसूरी भी पढ़ा मैं, तो फादर चाहते थे कि मैं आईएएस में जाऊँ, पर इतनी पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं थी। थोड़ा वो शायरी का शौक था, जो दोस्त थे हमारे और आज तक वही दोस्त हैं सहारनपुर में, उन वो भी बड़े आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड थे, तो हमें फिल्में देखने का तो बड़ा शौक था। मैं दिलीप साहब का फ़ैन था, देव साहब का फ़ैन था बहुत बड़ा, और बल्कि हमारे ग्रुप्स होते थे, कुछ दिलीप साहब के फ़ैन होते थे और उनके सामने आप दिलीप साहब की बुराई नहीं कर सकते थे, और कुछ देव साहब के फ़ैन होते, तो बाकायदा झगड़ा हुआ हो जाया करता था। लेकिन ये कि एक दिन मैं खुद एक्टर बनूंगा, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था।
0: तो कोई फिल्म देखी थी, उसका असर हुआ, कुछ तो बात हुई होगी, या कोई
1: नहीं,
0: ड्रामा किया, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ जहन पर, दिमाग पर?
1: मुझे बेसिकली क्या सबसे जो जहन में प्राइम चीज थी वो ये थी कि अपने दो पांव पे खड़ा होना जल्दी से जल्दी जिंदगी में। तो जो भी उस वक्त कंपटीशन आते थे, जैसे एनडीए का आया, डफरिन का आया, ऑफिसर ट्रेनिंग यूनिट होता था उसका आया, तो मैं सब कंपटीशन में बैठ जाता था, और बल्कि मैं एनडीए में ऑलमोस्ट हो भी गया था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम एक हो गया था उसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो जब ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म भी आया, तो वो मैंने फॉर्म चुपके से काट कर वो भेज दिया, और चुपके से, और अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि छोटे शहर में अगर ये पता लग जाए कि इसने फॉर्म भेजा था और ये सिलेक्शन नहीं हुई तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता कि भाई लौंडा हीरो बनने गया था, कुछ नहीं हुआ समझा? तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कॉल आ गया, और
0: स्कॉलरशिप भी मिलता था ना
1: नहीं
0: वहां पर?
1: स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता था,
0: नहीं,
1: नहीं इंस्टीट्यूट
0: अच्छा।
1: में स्कॉलरशिप उन दिनों नहीं था, इन दिनों हो तो मुझे मालूम नहीं। तो हमारा दिल्ली में स्क्रीन टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और हम सेलेक्ट हो गए।
0: अच्छा, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी इस लाइन में लाना चाहेंगे या वो जो खुद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ सोचा है आपने?
1: जाहिर है, देखिए हर बाप ये कहता है जो बनना चाहता है बच्चा वो बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ये उम्र कोई भी उम्र हो, तो वो इंडिकेशन देता है कि उसका रुझान किस तरफ है। तो बाप को ये कोशिश करनी चाहिए जिस तरफ उसका रुझान है उसे वो सब सप्लाई करे, चीज़ें, इंसेंटिव उसके शौक को पूरा करने के, तो वो अपना इवेंचुअली करियर बनाएगा। तो वो मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चों को, कुछ को एक को स्पोर्ट्स का शौक है, एक को पढ़ाई का शौक है, तो अगर इसमें निकलते हैं, और अगर उनको बीच में सिनेमा का भी हो जाता है और एक्टर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, आई थिंक इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत। आपसे बातचीत की है सविता बजाज ने।
0: अच्छा, आजकल आजकल के समय में फिल्म इंडस्ट्री को कला का गढ़ माना जाता है, गढ़ है ना? तो इसमें तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ज्यादा कोई बता रहा था कि कलाकार हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी क्योंकि हर आदमी इसी लाइन में आना चाहता है। तो आपकी क्या
1: ये
0: ख्याल है इस
1: आप
0: बारे में?
1: मेरा ख्याल फिगर्स इससे बहुत ऊपर
0: ऊंची है
1: ऊंचे
0: ना?
1: होंगे, क्योंकि
0: हाँ,
1: और आप इस बात की बात कर रही हैं, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहा था उस वक्त मेरा दोस्त एक इंजीनियर बनने के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी में गया था,
0: जी।
1: उस वक्त 75,000 इंजीनियर खाली था।
0: ओ
1: तो देखिए, एक क्लास में 60 लड़के होते हैं, पहले दो तीन तो दो तीन ही आएंगे, पांच दो दो तीन थोड़े ही आ जाएंगे, तो किसी का वो जो 60वां है एक 60वां भी होगा वहाँ, तो उसको ये बात से घबराना नहीं चाहिए कि भाई मेरा नंबर 60 आया, अबे तेरा नंबर 60 यहाँ आया, कहीं कोई और चीज़ जिम में ट्राई करेगा वहाँ नंबर 1 हो जाएगा। तो अपने अपना

0: पोटेंशियल खुद देखना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए ये।
1: मतलब इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए,
0: हाँ
1: चप्पा चप्पा कोशिश करते
0: बिल्कुल
1: रहना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बाकायदा
1: इसी बात पे आपको आपको वो जो गाना अच्छा लगता है, आप भी थे ना
0: चप्पा
1: माचिस
0: चा
1: फिल्म में,
0: माचिस माचिस
1: हो
0: में
1: जाए
0: नहीं, बिल्कुल हो जाए,
1: हैं चप्पा
0: जलाइए
1: चप्पा चरखा
0: जलाइए
1: चले
0: माचिस
1: तो सुनते हैं वही गाना चप्पा चप्पा चरखा चले,
0: जी।

0: कमल जी, आपको कभी कभी फुर्सत भी मिलती होगी, मतलब जब समय मिलता है शूटिंग से, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं?
1: देखिए, जब मुझे समय मिलता है शूटिंग से, तो सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, तो अपने बच्चों के साथ और घर पे अपनी बीवी के साथ हम लोग इकट्ठा रहते हैं। और अगर कुछ एक दो दिन की ज़्यादा छुट्टी हो जाए इकट्ठी, और बच्चों का भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो, तो हम लोग खंडाला वंडाला चले जाते हैं। तो ऐसे हमको, हम पूरे परिवार को, हमको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। तो अंग्रेजी में कहते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट वी स्टार्ट फॉर एनी डायरेक्शन ऑन दिस अर्थ। तो इसीलिए मैं हर साल अपनी छुट्टियां जो है वो बच्चों की छुट्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, एक तो दिवाली में और एक समर वेकेशन उनकी, तो उनके साथ मैं छुट्टियों पे चला जाता हूँ।
0: तो इसी बात पे कोई बच्चों के लिए
1: अब
0: गाना?
1: बच्चों के लिए क्या गाना, वो जब छोटा था, छोटे थे, तो इनको एक गाना बड़ा पसंद था, और मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों, क्योंकि वो उनकी उम्र का गाना है नहीं, लेकिन वो कुछ झूमने से लगता था, मेरा छोटा बेटा जो था, तो वो गाना है ना, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे बेटे को चांद लफ्ज समझ में आता होगा, तो उस वजह से वो यूज टू एंजॉय दैट नंबर, तो वो सुनवा देते हैं।
0: ठीक है, तो आइए सुनते हैं, रूप सुहाना लगता है।

0: अच्छा, कभी मन नहीं करता आपका भी कि मैं डायरेक्शन करूं?
1: आप दीजिए डायरेक्शन मुझे, आप लाइए
0: क्योंकि
1: प्रोड्यूसर तो मैं ये भी
0: बीस
1: कर
0: पच्चीस साल हो गए आपको
1: डालूंगा।
0: लोगों की बातें सुनते कि ऐसा ऐसा करो, अभी नहीं ऐसा करो, तो आपका तो दिल करता होगा कभी मैं भी कैमरे की
1: कभी
0: बागडोर संभालूं।
1: मैं उस बंदे का कॉलर पकड़ के कहूं कि अब तुम ऐसा करो। नहीं, अब देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग कोर्स करके पूना से यहाँ आया था। बड़ा मज़ा आता है इस काम में, इस प्रोफेशन में, लेकिन एज यू गो ऑन तो आप भी बहुत कुछ अलावा एक्टिंग के और भी आपके जो मीडियम है से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सीखते हैं। साउंड के बारे में सीखते हैं, पिक्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो ये मीडियम इतना फैसिनेटिंग है कि अगर मुझे कल को ये चांस मिलता है कि मैं डायरेक्टर डायरेक्शन करूं, तो मैं ज़रूर इसमें भी एक क्या कहना चाहिए, गोताबाना
0: चांस
1: हाँ
0: लेना
1: चांस लेना चाहूँगा।
0: अच्छा,
1: व्हाई नॉट,
0: फिल्म में या सीरियल में?
1: किसी में भी।
0: किसी में भी।
1: हाँ
0: अच्छा, कहते हैं ना कि डायरेक्टर बड़े आर्टिस्टों को डायरेक्ट नहीं करता, बल्कि आर्टिस्ट उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये क्या बात सही है?
1: पहली बात तो बड़ा आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि
0: आप बड़े आर्टिस्ट
1: मैं हाँ,
0: हैं
1: तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। तो अगर आप,
0: भाई।
1: हाँ मैंने आज तक कभी हमेशा अपने डायरेक्टर की सुनी है। हाँ देखिए, आर्टिस्टिक डिस्कशन जो हमारी सेट पे होती है कि भाई अगर हम ऐसा कर लें तो शायद ये ज़्यादा स्पॉन्टेनियस लगे, अगर हम यूँ डायलॉग लाइन को यूँ करें तो शायद ये डायलॉग ही ना लगे और ऐसे लगे कि वाकई बातचीत हो रही है दो कैरेक्टर्स के बीच में, तो इतना तो हमारा दखल है ही और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर नॉट पपेट्स, हम लोग कठपुतलियाँ नहीं हैं, एक्टर्स आर नॉट कठपुतलियाँ,
0: जी।
1: हम सोचने वाले जीव जंतु हैं। और हमको इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है कि ये लफ्ज़ जो है या ये लाइन, ये डायलॉग ही लगेगी, क्लीशेड लगेगी, मेलोड्रामेटिक लगेगी, या के सच्ची लगेगी। सच्चा लगना बड़ा ज़रूरी है।
0: ये सच्ची बात जो है आपने बोला, सच्चा लगना जरूरी। कहते हैं कि

0: अच्छा एक्टर वही होता है जो कि अच्छा इंसान होता है, तो ये बात भी क्या सही है, क्योंकि मैंने
1: पता
0: देखा है कई
1: नहीं,
0: एक्टर बड़े अच्छे हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट गुड ह्यूमन बींग्स।
1: मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी एक्टर अच्छा है, अगर आर्टिस्ट अच्छा है, चाहे वो पेंटर है चाहे वो एक्टर है, तो उसके काम से आप लुत्फ लीजिए ना, वो बुरा है या अच्छा है भाड़ में जाए
0: वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, कभी आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरुआत की, और उसके आप तो बहुत सीढ़ियां आगे चढ़ लिए, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे बहुत सारे साथी छूट चुके होते हैं, कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को सफलता नहीं मिलती, आपको कैसा लगता है ये?
1: देखिए, ऐसा आया कि मेरे साथ जो थे इंस्टीट्यूट से निकले, वो मेरा ख्याल अगर इस लाइन में कुछ मकाम हासिल नहीं कर पाए तो कहीं और हैं, और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। पीछे मुड़ के मैं नहीं देखता, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ।
0: आप पीछे मुड़ के नहीं देखते?
1: मैं कोशिश कर

0: बिल्कुल एटीट्यूड भी नहीं है, या फिर मेरी ये कोशिश भी नहीं है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूं, इतना एरोगेंस भी नहीं है उसमें। बस ये मेरे साथ रहा है कि कुछ पुराना याद नहीं आता मुझे ज़्यादा, और ये भी नहीं एटीट्यूड मेरा कि मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये सब भी नहीं है। बस ये जो इस वक्त कर रहा हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक दोस्त हैं रमेश दत्त, हमारे सहारनपुर में, वो बकौल उनके वो कहते हैं भाई अब बस जीना अच्छा लगता है।
1: वाह वाह,
0: हाँ तो ये काम अच्छा लगता है
1: मतलब
0: जो
1: छैया छैया।
0: हाँ छैया
1: तो आइए
0: छैया
1: फिर सुनते हैं छैया छैया,
0: बेशक
1: हैं आपको
0: बिल्कुल
1: पसंद है ना?
0: बहुत पसंद है।

0: अच्छा कमल जी, आप एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं?
1: एक्टिंग
0: एक्टिंग के अलावा
1: देखिए
0: एक्टिंग
1: बेसिकली
0: मतलब 24 घंटे आप एक्टिंग करते रहते हैं
1: वही
0: वेदर
1: नहीं,
0: कैमरा इज ऑन और
1: नहीं ये मैं
0: नॉट।
1: वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग है जो मैं उसके सामने करता हूँ
0: कैमरे
1: कैमरे के सामने
0: जी
1: उसमें से एक्टिंग बिल्कुल खत्म कर दूँ।
0: अच्छा
1: तो हाँ, तो बाकी क्योंकि सारी जिंदगी में हम एक्टिंग करते ही रहते हैं तो कम से कम यहाँ से बिल्कुल निकाल के इसका वजूद खत्म करना चाहता हूँ। कितना कामयाब हुआ हूँ ये पता नहीं लेकिन कोशिश मेरी यही है। बाकी इसके अलावा
0: जी
1: मैं मुझे शौक है खेलने के। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन बचपन में स्कूल में भी और अब भी टेनिस खेलता हूँ मैं और टेनिस से बहुत लगाव है बहुत इश्क है और क्रिकेट से भी अपने बच्चों के

0: घर में जब बीवी नहीं होती तो फुटबॉल खेलता हूँ, तो क्योंकि बीवी हम लोग को खेलने नहीं देती
1: शीशे वीशे टूट जाते
0: तो
1: हैं
0: जब वो घर में होती हैं तो हम लोग थोड़ा बाहर आंगन में खेल लेते हैं, जब वो बाहर होती हैं तो फिर हम लोग अंदर खेल लेते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे।
1: अच्छा, तो आप उनकी मदद भी करते होंगे किचन में, या वो आपकी ही मदद करती रहती हैं हर
0: नहीं, मैं
1: समय?
0: उनकी मदद इस लिहाज से करता हूँ कि मुझे खाने का बड़ा शौक है, तो वो खाना इतना अच्छा लजीज बनाती हैं कि मैं उसको खाने में मदद करता हूँ। बाकी मुझे खाना, हालांकि आई एम सरप्राइज माई सेल्फ, क्योंकि मैंने इतना लंबा अरसा बैचलर लाइफ लीड की है मुंबई में, कि और अकेला रहा हूँ जिंदगी में, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आया और खाना बनाने की कोशिश भी नहीं की मैंने। हालांकि मेरा एक भाई है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, मुझे नहीं बनाना आता।
1: अच्छा, आपके आने वाले कोई सीरियल या फिल्म?
0: यह एक अभिमान कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं राकेश सारंग, उनके साथ कर रहा हूँ, मनीष गोस्वामी का सीरियल है और वो आने वाला है। बाकी तीन ऑलरेडी चल रहे हैं तो मुझे वक्त भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर सकूँ। ये ख़त्म होने वाले हैं कुछ, सांस जैसे हुआ ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरा आई'ल टेक ऑन। एक आधा पायलट किया हुआ है और पायलट किए नीना के साथ, दूसरा हमारा पायलट शूट होने वाला है। तो ऐसा ओवरलोड नहीं करता मैं काम से अपने आप को,
1: मतलब जितना कर सकते हैं उतना ही लेते हैं आप?
0: हाँ जितना अपनी पूरी एबिलिटी, अपना पूरा कंसंट्रेशन में जिस काम को दे सकूं वही करता हूं। तो अच्छा, आप मेरे मेरी पसंद के गाने तो सुनते रहे, आपको क्या पसंद है?
1: मुझे, आपने एक बहुत बड़ी फिल्म की थी,
0: हाँ
1: सत्ते पे
0: सत्ता,
1: सत्ता,
0: जी हाँ जी
1: है
0: हाँ,
1: ना?
0: तो उसका गाना प्यार हमें किस मोड़ पे
1: आहा,
0: ले
1: ले
0: आया।
1: आया है।
0: चलिए साहब।

0: अच्छा कमल जी,
1: जनाब।
0: अगर आप अभिनय नहीं करते तो क्या करते?
1: हाँ, अभी नहीं करता। मैंने जैसे शुरू में बताया, मैं फौज में जाना चाहता था, एयरफोर्स में, तो वहाँ इवेंचुअली नहीं जा सका कुछ वजह। तो मुझे समझ में नहीं आता वाकई मैं क्या करता, क्योंकि ये काम, इसमें आने के बाद मुझे इससे इतना इश्क हुआ है इस काम से, कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और काम कर सकता।
0: मतलब आदमी बेकार हो जाता है
1: हाँ हाँ
0: कुछ
1: बेकार
0: और
1: ही,
0: कर ही नहीं सकता एक्टर बन के
1: बिल्कुल नहीं,
0: है
1: एक्टर बन के बेकार हो जाता है ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इसको इससे
0: मतलब
1: अगर
0: इश्क
1: इश्क
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाए, अगर
0: है।
1: इससे इश्क हो जाए तो फिर मतलब और कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ना, अगर एक और चांस दिया जाता मुझे, तो शायद मैं स्पोर्ट्समैन होता, शायद मैं टेनिस खेलने लगता।
0: अच्छा कई ऐसे भी डायरेक्टर
1: हाँ
0: हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, या कोई ऐसे स्टार्स, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए, कोई बचा होगा जो आपके फेवरेट रहे हो और आपको मौका नहीं मिला होगा, तो आप तो अभी ऐसे स्टेज पर हैं कि आप जिसके साथ चाहें काम करना चाहें आप कर सकते हैं, तो अभी आप किन के साथ काम करना चाहते हैं?
1: देखिए, जिनके साथ मुझे, मैंने काम किया है ऑलरेडी, उनको मैं जानता हूँ, और उनमें मोस्टली बड़ा मज़ा आया है सबके साथ काम करने में। और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो मैं कह नहीं सकूँगा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं वैरायटी ऑफ एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, अलग अलग रिएक्शंस मिलते हैं, वरना एक वो होता है इंस्टिंक्टिवली आपको मालूम है अगला क्या करने वाला है, तो आपका परफॉर्मेंस और जो इंटरेक्शन है वो ज़रा रेपिटेटिव हो जाता है।
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई स्टार तो होगा ना आपका फेवरेट जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टर कि इतने सालों तक तो आपको चांस नहीं मिला, अभी तो आपका समय आ
1: नहीं
0: गया
1: नहीं
0: कि मैं काम कर लूं,
1: मैं अच्छी स्क्रिप्ट में काम करना चाहता हूँ।
0: ऐसा कोई फेवरेट नहीं है या लॉन्गिंग नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: नहीं,
0: चलिए इसी बात पे एक गाना सुनवा दीजिए, थोड़ा मूड अच्छा हो जाए।
1: मूड अच्छा हो जाए। चलिए, तो फिर अपनी बीवी के बात जब करता हूँ तभी मूड अच्छा रहता
0: ठीक
1: है। तो उन्हीं की फिल्म का एक और गाना सुना देते हैं आपको, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा।

0: इस गीत के साथ ही मैं कमल जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विविध भारती स्टूडियो में आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े अभिनेता कमलजीत से सविता बजाज की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने, प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना, बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जानी मानी भजन गायिका एम एस सुब्बालक्ष्मी का जन्मदिन है। हम उन्हीं की याद में ये भजन आपको सुनवा रहे हैं।

एमएस सुबह लक्ष्मी की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भजन सुना, और आइए एक बार फिर इसी आवाज को सुनते हैं। ये भक्तिपद भी संत मीराबाई का ही है।

महान भजन गायिका एमएस सुब्बालक्ष्मी के जन्मदिन पर हमने उन्हें इस कार्यक्रम में भजन के जरिए आज याद किया। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और गैर फिल्मी गीत, स्वर जावेद अली का। गीतकार और संगीतकार हैं सुहित अभ्यंकर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश आवाजें मुबारक बेगम, जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की, और ये अजीज गाजी की लिखी कव्वाली है। संगीत विपिन और महबूब का है।

और आइए अब सुनते हैं पापोन की आवाज। इसे श्वेता बोथरा ने लिखा है और धुन बनाई है पुनीत दीक्षित ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो

0: लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं चित्रा सिंह की आवाज में रोशन नादान का ये कलाम।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार का लिखा ये पारंपरिक गीत, आवाजें मीका सिंह, यो यो हनी सिंह और साथियों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आपने ये भक्ति पद सुना। आइए लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये नानक का शब्द। संगीत दिया है सिंह बंधु ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद मेहदी हसन का गाया ये राजस्थानी लोकगीत मांडगायकी के रूप में।

केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान की जबान है ये। केसरिया महबूब से मुखातिब।

सूरज से मैंने समाज होने के सूरज तुम्हें मैं पूजूंगी, भर मोतीरारो थाल, मोतियों का थाल भर के मैं पूजूंगी।

0: केसरिया बालम आहुनी पधारू मारे देश, अभी आपने उस्ताद मेहदी हसन की आवाज में ये राजस्थानी लोकगीत सुना। और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार के लिखे बोल, गाने वाले कलाकार भूपेंद्र भूपेन हजारिका, नितिन मुकेश और साथी। इस गैर फिल्मी रचना को संगीत दिया है भूपेन हजारिका ने।
1: बंवराता आया

0: इस गैर फिल्मी रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस वक्त
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे। ये कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे समाचार के बाद। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, हिंदी में समाचार रिलीव किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप पुनः सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम, रिलीव किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: और विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे संगीतकार राम लक्ष्मण को भी। तो पहले सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में ये गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण का संगीत। नूर कसकार का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम महबूब मेरे महबूब।

अभी आपने राम लक्ष्मण की संगीत निर्देशन में पत्थर के फूल फिल्म का ये दो गाना सुना। स्वर लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम के थे। इससे पहले आप सुन रहे थे फिल्म सातवां आसमान का गीत। गाने वाले कलाकार थे प्रीति उत्तम और उदित नारायण। सूरज सनीम के बोल थे और राम लक्ष्मण की धुन।

0: राम लक्ष्मण की संगीत निर्देशन में रविंद्र रावल का लिखा गीत आपने सपना अवस्थी का गाया हुआ सुना। फिल्म का नाम था दुल्हन बनू मैं तेरी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
7: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
8: क्या बात है।
7: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
6: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
7: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
6: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत, और अब सुनते हैं गीतकार प्रसून जोशी की गीत रचनाएं। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स, आवाजें रेखा भारद्वाज और साथियों की प्रसून जोशी के बोल ए आर रहमान की धुन।

कार्यक्रम में आप सुनिए जतिन ललित का संगीत, प्रसून जोशी के बोल, शान और कैलाश खेर की आवाजें, फिल्म का नाम है फना।

कार्यक्रम का अगला गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का ही लिखा हुआ स्वर है बेनी दयाल श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम है गजनी।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम तुम का युगल गान, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, गीत प्रसून जोशी का और धुन जतिन ललित की।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में 3री बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। पुनः आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित।
4: आप भी याद कीजिए ऐसे कौन से गीत हैं जिनके शब्दों का या वाक्य का मतलब आज तक समझ में तो नहीं आया, फिर भी उस गाने को सुनते ही हमारा मन झूम उठता है। तो हमारे श्रोताओं ने तो बहुत सारे गीतों का जिक्र भी कर दिया है। अब देखते हैं आपकी पसंद और हमारी पसंद कितना मेल खाती है।

जी हाँ, लारा लप्पा लाई लप्पदा, आडी टप्पा लाई लप्पदा, कितना खूबसूरत। कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के साथ हमने की, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका कोई सीधा साधा अर्थ तो नहीं होता, लेकिन उनकी लय और अदायगी सुनते ही मन झूम उठता है। जैसे कि अभी आपने इस चटपटे और मस्ती भरे गीत को सुना लारा लप्पा के रूप में। फिल्म का नाम था एक थी लड़की, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, जीएम दुर्रानी और साथियों की थी। गीतकार थे अजीज कश्मीरी, हाँ, और संगीत दिया था विनोद ने। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत की खूबसूरती यही है कि उसे समझने के लिए हर शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं। कभी कोई अटपटा सा शब्द, कोई अनोखी ध्वनि या अर्थहीन सी पंक्ति भी लय और सुरों के साथ मिलकर मन में उत्साह, शरारत और आनंद भर देती है। जहां शब्द शायद शब्दकोश में न मिले, मगर उनकी धुन सीधे दिल तक पहुंचती है। आखिर गीत केवल अर्थ से नहीं बनता, वो सुर, लय, आवाज और एहसास से मिलकर यादगार बन जाता है। बस अब अर्थ के पीछे न भागें, धुन को महसूस करें और उन गीतों के साथ झूमें जिनके बोल भले ही अटपटे लगते हों। आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है, हो सकता है ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में भी हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में उकेरे भाव वाले गाने कुछ अटपटे, विचित्र, निरर्थक स्वीकारोक्ति का, स्वरोक्ति का निरूपण करता दिख रहा है। संगीत शब्दों से परे ध्वनियों का एक संसार है। जब शब्द अर्थहीन भी होते हैं तब भी स्वर और ताल का संयोजन सीधे हमारे मन को छूता है। संगीत की कोई भाषा नहीं, लेकिन भावानुवाद होता है, और इसी को उजागर करते हैं आज के कुछ गीत। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन इन गीतों में से हमने भी कुछ गीत अपनी लिस्ट में रखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने कितनी दफा इन अटपटे चटपटे गीतों को सुना है और इन गीतों की जुबा में ढले बोलों को, रेशमी छुअन को आज भी बरकरार रखा हुआ है। क्या हुआ अगर अटपटे बोल हैं, तो क्या हुआ अगर उन बोलों का अर्थ समझ में नहीं आया। इन गीतों के रचयिता और मीठी धुन में पिरोने वाले संगीतकार तो हमारे हृदय तल में

0: आज भी बसे हैं ना। इन गीतों में राग रागिनियों का रस तो भाव भरा है, सुर और शब्द की परस्परता में प्रेम करुणा और संवेदना के मानवीय मूल्यों की गहरी उपस्थिति हमें जोड़ देती है और ले जाती है हमें उस मोहक संसार में जहां बस संगीत का रसायन फिजा में दूर दूर तक घुला हुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और जैसा कि हमने कहा कि शब्द भले ही निराले हों मगर धुन ऐसी कि सुनने वाला अपने आप गुनगुनाने लगता है कुछ गीत। और आज के सुरीला सफर में तो हमने इन्हीं शब्दों की शरारत का आनंद भी लेना है। हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो आंखें बारह हाथ का ये गीत, बहुत ही मस्ती भरा अंदाज।
1: आओ आओ होनहारो प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे उम्र के कच्चे, बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बनके मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान के सीना, तक तक धुम धुम तक तक धुम धुम तक तक धुम धुम।
0: जी हाँ, पूरे गीत में तक तक धुम धुम तक तक धुम धुम सुनेंगे आप।

0: करोगे? डर जाओगे? ना तो क्या करोगे?
1: जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद तो हमारे पैर भी थिरकने लगे, आपके भी थिरक रहे थे। बताइएगा मुझे कि कैसा लगा ये गीत सुनकर आपको। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि सुरीला सफर का आज का विषय बहुत ही मजेदार है। सच में संगीत का जादू ही ऐसा है कि कभी कभी बेतुके और अटपटे शब्द भी धुन के साथ ऐसे घुल जाते हैं कि बरसों तक हमारी जुबान पर रहते हैं। उन्होंने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है और लिखते हैं कि इन गानों के शब्दों का कोई मतलब भले ही समझ ना आए, पर इनकी मस्ती और धुन सीधे दिल में उतर जाती है और सुनते ही मन झूम उठता है, जैसे कि अभी हम झूम उठे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को सुरीला संगीत के साथ साथ अर्थहीन शब्दों वाले गीतों से सजाया गया है। ऐसे ही इस कार्यक्रम में नयापन हो तो कार्यक्रम सुनने की प्रतीक्षा बढ़ जाती है, वरना इस कार्यक्रम में कुछ भी नयापन नजर नहीं आता। तो इसके लिए आप धन्यवाद देते हैं हमें। कुछ अनोखे और जिसका कोई अर्थ ही न हो ऐसे गीतों से साझा आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आएगा। और आपने भी लारा लप्पा गाने का जिक्र यहाँ पर किया, जो कि हमने आपको सुनवा भी दिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़े ही मजेदार शब्दों का गड़बड़ झाला लेकर आप आ रही हैं। ये वो शब्द होंगे जिनको हमने बहुत बार सुना है और हमारी जुबान पर चढ़ भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये गीत तो हमारे गीतकारों ने लिखे हैं और हमें तो उन्होंने झूमने पर मजबूर कर दिया है ना। एक श्रोता का लिखना है कि आज का सुरीला सफर मेरे ट्रेन के सफर के साथ साथ चलेगा, आज के कार्यक्रम का लुत्फ सफर में ही उठाएंगे। क्या बात है, तो आपका सफर बहुत ही मंगलदायी हो, है ना, मंगलमय हो, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम आपके इसी सफर में। और आज के दो सवाल अब हम आपसे पूछना चाहेंगे। वही कार्यक्रम से जुड़े सवाल ही हैं कि ऐसा कौन सा गीत है जिनके बोलों का स्पष्ट अर्थ तो नहीं है, लेकिन वो अजीब सा जो शब्द है आपको आज भी याद है। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो त्रिदेव फिल्म का गाना है ना, ओए ओए ओए ओ वाह, ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। ये जो कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से गाया जाता है, अमित कुमार साहब गाते हैं, तो ये गाना जो शुरू होता है तो एक अलग ही रिदम महसूस होती है। और तो आपको भी बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द आपको पसंद आता है या आया किसी एक गाने का जिक्र बस। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी या निरर्थक जिसे हम मानते हैं, कौन सी है जो आपको सबसे मज़ेदार लगती है।

आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं और देखिए कभी कभी क्या होता है कि गीतकारों ने ऐसे गीत लिख दिए हैं जिनका कोई मतलब ढूंढने बैठे तो शायद उलझ ही जाएगा, लेकिन सुनते ही वो गाना चेहरे पर हमारी मुस्कान जरूर आ जाती है। तो ऐसे ही शब्दों की मस्ती है इस गीत में, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कहते हैं मुझको राजा। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

हाकु पाकु दिल हाकु पाकु राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार करो चुप चुप दूध पियो चुक चुक ठन ठन फुट फुट फुट फुट फुट फुट ठन ठन फुट फुट हाउ डू यू डू बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक बम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक बम चुक बुब चुक पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बम बम मकुक बाबा लोग सुनो काका लोग सुनो दादा लोग सुनो जल्दी जल्दी ये क्या ले बादशाह ना दे कुड़िये ये पुत्र है

बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिका बम बम चिका बम बम ठप ठप ले ले बुचट कक कक ठप ठप ले ले बुचट कक कक फट फट ले धोबी फट कक कक फट फट ले धोबी फट कक कक ले बुचट का धोबी

0: हटके चल वे दिखा दे प्यारे लटके यहीं से दिखेगा अलमत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता हरे रामा कृष्णा प्यार की कहानी चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी कल आज और कल 20 साल पहले एक से एक नहले पे दहले एक से एक नहले पे दहले बैगुम बैगुम काला तुड़ी जो दुन मस्ता चोशुर बारी रेल कॉम जोमा जोम पा बिजे आलो दम चांद की भाजी हाय मुल्ला काजी रसून की चटनी हाय कटनी का बटरा मुंशी मुंडक्का हक्का पक्का हुजूर अगदास दिमागे फुरकत हुजूर अगदास दिमागे फुरकत कमाले हलकत चल हट नट खट पन घट जट पट फुटबॉल वॉलीबॉल डस्टबिन बेसबॉल पिंग पोंग किंग कॉन्ग बॉल बॉल हॉल हॉल
1: क्या शानदार गीत था और हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या सोच के मजरू साहब ने इस गीत को लिखा होगा, है ना? आपके मन में भी जरूर ये सवाल आया होगा। तो इस मजेदार गीत के बाद हम श्रोताओं के जो विचार हैं उनको शामिल करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अर्थहीन शब्दों के गीतों से सजा सुरीला सफर कुछ अलग अंदाज में होगा, ऐसा हम सोचते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये गीत के शब्द शब्दकोश में हैं भी कि नहीं। गीतकार ने क्या सोचकर लिखा होगा इन शब्दों को और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर गीतों के शब्दों को गुनगुनाने के लिए इस प्रकार से ये हमारे लिए छोड़ दिया और गीत हमेशा के लिए यादगार गीत बन गए। तो फिर सुनते हैं खूबसूरत गीतों का ये सफर आपके साथ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं हमें उम्मीद है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में कई ऐसे हैं जिसमें कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता पर सुनने में मजा आता है। ये ताल धुन और सुंदर संगीत के संयोजन पर निर्भर करती है। जीवन से न हार जीने वाले जिंदगी है खेल जैसे करके आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी शब्द अर्थ की तलाश छोड़कर सिर्फ धुन का हाथ थाम लेते हैं फिर बेतुके से बोल भी सुरों में घुलकर ऐसी मिठास रचते हैं कि उनका कोई शब्दार्थ न होते हुए भी वे मन की भाषा बन जाते हैं। संगीत की यही खूबसूरती है, जहां शब्द चुप हो जाते हैं वहां धुन अपना अर्थ खुद लिख देती है। आज सुरीला सफर उन्हीं अलहड़ अटपटे और बेपरवाह बोलों की दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा जहां अर्थ भले न मिले मगर आनंद भरपूर मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज आपको आनंद तो भरपूर मिल रहा है ना? सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था, ऐसा कौन सा गीत यानी किसी एक गीत का नाम आपको बताना है जिनके बोलों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था लेकिन वो अजीब सा शब्द या वाक्य आपको आज भी याद है। जैसे कि हमने आपसे कहा ओए ओए ये जो वाक्य हमें बेहद पसंद आता है, खासतौर से मुझे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि आपको किसी एक गीत की वो पंक्ति जो बेतुकी लगती है या निरर्थक लगती है या आपको हंसा देती है, कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगती है? जैसे कि अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं ना, उसमें वो पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है, कौन सी बताइए? फिल्म जंगली का गीत है वो। शुकू शुकू अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, है ना? तो कभी कभी प्यार में दिल की बात कहने के लिए बड़े बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते दोस्तों, बस एक शरारती सी धुन और कुछ अनोखे बोल काफी होते हैं। और ये जो गीत अब आप सुनने वाले हैं इसके बोल भी उसी मस्ती और चुलबुलेपन का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं फिल्म जंगली का ये दिलकश और मस्त मौला गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है। और हाँ, ये भी बताइएगा, फिल्म जंगली का एक और गीत है जिसे हम अक्सर कहीं ना कहीं उस शब्द को गाते हैं या पसंद करते हैं। लिखना शुरू कर दीजिए।
2: करूं मैं क्या सुकु सुकु आई आई या करूं मैं क्या सुकु सुकु

दीवाना कहे कोई परवाना कहे जलने को बेपरार चाहत का मुझ पे असर मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर मंजिल है मेरी प्यार अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू

0: चौंको मत ऐ दोस्तो, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इसी फिल्म में एक और गाना है, याहू, है ना। ये गाना हमें बेहद पसंद आता है और जब भी हम खुश होते हैं तो इसी अंदाज में गाते हैं याहू। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दे दिया है कि वो कौन सा गीत है। वो यही गीत है, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। और भी श्रोताओं ने लिखा है कि श्रीदेवी का हवा हवाई गाना उन्हें बहुत पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे उल्टे पुल्टे गीतों में मुझे जब जब फूल खिले का गीत रफी साहब का है वो पसंद आता है। और फिल्म कारवां का भी जो आशा जी की आवाज में है कि मैं कहां आप फंसी, वो वाला गाना इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता को किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मेरे सामने वाली खिड़की में उस गाने की जो शुरुआत है वो बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को यम्मा यम्मा जो गाना आर डी बर्मन की आवाज में है वो बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के गीतों में अटपटे या बेतुके शब्दों जिनका शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इसके साथ साथ कुछ गीतों में दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य का प्रयोग गीत के मीटर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, लेकिन वे बेतुके नहीं होते और उनका अर्थ होता है, जैसा कि दो फूल का गाना है मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि हम तमिल गीत को नहीं समझ पाए, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, उस वाक्य को नहीं समझ पाए, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या दिया है गीत करने। लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है, जब हम समझते हैं तब पता चलता है, लेकिन उसको सुनते समय हमें लगता है कि कितना बेतुका सा शब्द लगता है, है ना। और वहीं और सारे गानों का जिक्र भी आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अभी मुंबई की उड़ान पर हूं, इसलिए आज के दिलचस्प कार्यक्रम में प्रतिभागी नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अरे, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और लगातार लिखते हैं, अच्छी बात है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम ये उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का अंदाज और मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में मंदाकिनी जी अपने आप में एक ऑल राउंडर उद्घोषिका हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, आपने हमारी तारीफ में लिखी है कुछ चंद पंक्तियां, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि सच में संगीत अद्भुत कला है जिसे वरदान स्वरूप इंसानों को मिला है। कई पुराने गीतों में उटपटांग शब्दों को भी इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, ढालकर प्रस्तुत किया गया है कि आश्चर्य भी होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अत्यंत सुंदर गीतों से सजे हुए सुरीला सफर में कई दोस्तों को नमस्कार लिखते हैं और हमें भी हंसती खिलखिलाती हुई। अच्छा, हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में गीत शब्दों का अर्थ घटन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है, चाहे टिम्बकटू हो या काठमांडू, लारालप्पा कहते हुए अपलम चपलम हो, गापूजी गापूजी हो, या फिर देखिए डम डम डिगा डिगा होता है, अगर नहीं हुआ तो इनामिना डीका होगा, और होना ही है। विविध भारती के लिए इतना जरूर कहते हैं कि आहा झमाझम प्यारे प्यारे गीत लिए, जब छोटी बहना मंदाकिनी जी आ रही है तब झिंगुर तो बोलेगा, और चिकी मिकी जब हमारी नजर टिकी हुई है घड़ी की सुई की और, तो कब एक बजने वाला है और चिल चिल के कजरी सुनने को मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है, शुक्रिया, मेहरबानी। और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम त्रिदेव। कितना चला था ये ओए होए, याद है आपको? इससे जुड़ी कोई घटना याद हो तो बताइए।

हमारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। आप लिखते हैं कि अजी किबला मोहतरमा, ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू चीज बड़ी है मस मस, ये मोहरा फिल्म का गाना हमें पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार का फिल्म मिस मैरी का गाना गाना न आया बजाना न आया, ये गाना बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमसे आंख मिलाना बीए पास करके, ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार जी का एक गाना पसंद है, जगत नारायण की जय जय बोलो और नगन नारायण छोड़ो, उसमें भी बीच में बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, शब्द आते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हैं। वहीं एक श्रोता को मुझे संगम फिल्म का गीत लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज तो आपने मेरी मनपसंद का ये सबसे मनपसंद गीत सुनवा दिया जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ है। और मैं अभी यही बताने वाला था कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है, आपने जो सवाल पूछे थे उसका पहला जवाब यही है कि किशोर कुमार का गाना ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गीत याद आ रहा है, मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू, ये गीत बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता को हेलन जी पर फिल्माया गया गाना आ जाने जा, इसमें जिंगा लाला हूं जो शब्द आते हैं वो इन्हें बेहद पसंद आते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये शालीमार फिल्म का गाना है, इसमें ये पंक्तियां आती हैं झिंगा लाला हुर हुर ऐसे करके आती हैं। तो आप कहते हैं कि इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया मंदाकिनी जी, लेकिन गाने का आनंद तो आप उठाते हैं ना। एक श्रोता को इलू इलू गाना जो था वो बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नीलकमल पिक्चर का गाना है खाली डिब्बा खाली बोतल, ये बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता को पाँच रुपया बारह आना गाना जो है किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ, वो बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन फिल्म का गाना इन्हें बेहद पसंद है, साथ ही फिल्म झुमरू का गाना आपने लिखा है जा रे जा तू मुँह धो के आ, जहाँ किशोर कुमार और आशा भोंसले इस गीत को गाते हैं, वो गीत बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गे गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू वाला गाना बहुत पसंद है। और एक श्रोता को पड़ोसन फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही एक श्रोता ने लिखा है कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, ये गाना हमें बेहद अच्छा लगता है। आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। खय्याम साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन अटपटे और अर्थहीन जैसे लगने वाले शब्दों को लोगों के दिल तक पहुंचाने में सचमुच संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत दिनों बाद ये तक धुम धुम गाना सुना, अटपटा है मगर सुर लय के कारण बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई भी गाना निरर्थक नहीं होता, जो संगीत मन को भा गया वही अर्थपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी गीत निरर्थक नहीं होता। हमने कहा कि हमें कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो बेतुके से लगते हैं या निरर्थक लगते हैं, तो लेकिन उनका इस्तेमाल कितने खूबी के साथ किया गया है कि वो गीत हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, तो उन गीतों का जिक्र आज हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुके शब्दों से बने गीत अक्सर आपस में खेली जाने वाली अंतराक्षरी की शान होते हैं, जिसे सब बढ़ चढ़ कर गाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आप हर बार नया विषय खोजकर लाती हैं जो आपके रिसर्च वर्क को दर्शाता है। दूसरे, आपकी इबारत एकदम नपीतुली है, टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं है, गागर में सागर की तरह। आज अटपटे शब्दों वाले गीत विषय पर मुझे एक अलग तरह का गाना याद आ रहा है, मोहम्मद रफ़ी साहब और शमशाद बेगम की आवाज़ में है और तारा रम पम पम पम करके ये गाना है जो इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हमारा दिमाग सुन्न हो गया है कुछ भी गाने समझ नहीं आ रहे हैं। अरे, आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद तो आपको लगा होगा ना कि आज हमने किस तरह के गीतों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमय इबारत की बात सामने आई है, आज कुछ ऐसे गीतों की बाहर है जिनके शब्दों में अर्थ भले ही हमें शब्दकोश में ना मिलते हों, लेकिन उनकी धुन, सुर, लय, ताल हमारे जहन में है ना, कितनी अच्छी बात। अरे, दिल तो अभी से ही हक्कू बक्कू करने लगा है। और आपने कई शब्दों का जिक्र भी किया है जो किशोर दा अपने गानों में अक्सर करते हैं, ओ पांडुबा, है ना, इस तरह के गाने किशोर दा ने बहुत गाए हैं, उनका जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गीतों की गणना हास्य गीतों में की जा सकती है और हर जीवन में हास्य की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जीवन के आपाधापी में प्राय सभी के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। इस दृष्टिकोण से आज का ये इबारत प्रशंसनीय है, अपितु सराहनीय भी है। अब देखिए ना, पुराने किशोर कुमार अभिनीत फिल्म आशा में किशोर कुमार ने एक गीत गाया है इना मीना डी का, और संजीदगी से भरा वो गीत है, लेकिन जब उसे सुनते हैं तो उसका कुछ और ही रूप नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, जब इस गाने का जिक्र हो गया है तो सुन लेते हैं यही गीत। सी रामचंद्र यानी चितलकर साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण की भूल है, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है आशा।

तो किशोर कुमार और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था आशा और ये गीत तो हमने कई बार कई जगह गुनगुनाया भी है और कई कार्यक्रमों में हमने इस गीत को बखूबी और लोगों को गाते सुना भी है। लोग कोशिश करते हैं कि इस गीत को किस तरह से हास्य से परिपूर्ण बना दिया जाए, है ना? आपने भी कोशिश की कभी इस गीत को गाने की, बताइएगा। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं जहां हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। बताइए इसमें कौन सी पंक्ति है जो हमें थोड़ा सा अटपटी लगती है लेकिन बड़ी मजेदार है?

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संगीत की उस अनोखी दुनिया की ओर ले जाती है जहां हर बात का अर्थ होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई स्पष्ट मतलब नहीं मिलता, फिर भी वे धुन के साथ मिलकर यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही गीतों से जुड़ा है आज का ये कार्यक्रम और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों का जिक्र भी किया है जिनमें हमें ये अटपटे और चटपटे शब्द सुनाई देते हैं और वो गीत हमेशा के लिए यादगार बन भी जाता है। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं तक और फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment.

0: during the evening today. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions are expected over Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan for the next 2 to 3 days. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night to take an unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Chasing a target of 160 runs, India comfortably reached 163 for 3 in 14.5 overs. Sanju Samson top scored with a blistering 57 off 22 balls, while Abhishek Sharma contributed 39 runs off 19 balls. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 297 points to 74,301, while Nifty added 106 points to 23,225 when reports last came in. And before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for mature tax policy debate, keeping national interest first. India lodges strong protest with Pakistan over unacceptable conduct of Pakistani naval units leading to naval collision in international waters. India Electric Mobility Index 2025 announced by Niti Aayog, Delhi emerges top performer in adopting electric mobility, followed by Maharashtra and Karnataka. Saudi Arabia says it intercepted Houthi drone near Makkah. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया. नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन. सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया. हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया. और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान. अब समाचार विस्तार से. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए. वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन

0: वास्तव में लागू किया जा सके।
1: अ वर्कएबल अल्टरनेटिव।
2: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दविचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIR News Hindi और पब्लिक पर

0: विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
3: वासुदेव
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बुलक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमिन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया, हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे अंग्रेजी और हिंदी में दोपहर समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
3: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम आरती, गीतकार

ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था आरती। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म आशिक, आवाज मुकेश की, शब्दकार शैलेंद्र हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत SH बिहारी का लिखा हुआ, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम अपना बना के देखो।

0: अपना बना कर देखो।
1: वो लिखती है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने

0: से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम है बंबई का चोर। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: सुनिए,
4: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: सुनिए,
4: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, श्रोताओं को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

0: भी अनियमित हो जाता है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कुछ गड़बड़ा जाती हैं।
1: बिल्कुल, और खास तौर पे जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि सबको देने में, सबके लिए ध्यान रखने में, और जो घर में मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखने में कहीं अपना ख्याल पीछे छूट जाता है।
0: बिल्कुल, सबसे पहले जो आगंतुक हैं, मेहमान हैं
1: जी,
0: हमारे अतिथि हैं, उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको पहले परोसा जाए, और सबका करते करते इतनी देर हो जाती है कि जो दोपहर के भोजन का समय होता है 1 से 2 के बीच का, 3 बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता है। और आज तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कार्यक्रम
0: बिल्कुल
1: में।
0: बिल्कुल, त्योहार की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी विरासत है, धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं,
1: जी
0: और यही अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे पाएंगे।
1: बात तो बिल्कुल सही है, और बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर के हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, इसीलिए बात होगी। पहला विषय जो है हमने चुना है आज के लिए कि त्यौहार हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, इस पे आप क्या सोचते हैं और आप कितना इसको आगे बढ़ाने में इसकी कोशिश जारी रख रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर कोई चीज़ को आगे बढ़ाना है हमारी धरोहर को, तो आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है ना,
1: अरे बिल्कुल।
0: क्योंकि जब तक हम चीज़ कोई किसी को देंगे नहीं, वो उसको ग्रहण कैसे करेगा, और वो ग्रहण करेगा तभी तो आगे पहुंचाएगा, यही तो होता है आदान प्रदान।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना भाई, आदान प्रदान अच्छी चीजों का हो वहां तक तो ठीक है,
0: जी
1: लेकिन अगर आप पर्यावरण में कुछ ऐसी विषैले पदार्थ लगातार अगर निकालते चले जा
0: जी
1: रहे हैं, तो फिर देखिए ओजोन परत के संरक्षण में गंभीर विषय अब बन चुका है वो, और उसमें कई सारी तकलीफें आ रही हैं। और यही बातों को समझने के लिए आज हम ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: इस पर भी विस्तार से बात होगी, और हमारे सुनने वाले शायद इस बात को समझ रहे हैं कि हम सीधे सीधे विषय नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि हम किन चीजों के बारे में, किन विषयों को लेकर आज बात करने वाले
1: अरे
0: हैं।
1: भाई इतना देखिए, गंभीर ना हो जाइएगा, आज व्यंजन भी है, क्योंकि मोदक के कई सारे प्रकार चंचल हमें बनाने हैं, और बहुत सारे संदेश आए हैं, और बड़े मजेदार कुछ रेसिपीज भी हमारी सखियों ने लिख भेजी
0: तो
1: है।
0: तुमने ओजोन दिवस की जब बात की तो मुझे याद आया कि और भी 2 महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। एक तो है हृदय में हस्तक्षेप द्वारा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर्स इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित किया गया था, और इसी दिन 16 सितंबर यानी 2077 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटिजिक ने पहली बार एक सफल एंजियोप्लास्टी की थी, और इसीलिए दिल की जो बीमारियां हैं, जो सर्जरी है, उसके बारे में जागरूकता हो, इसलिए दिवस हम मना रहे हैं।
1: बिल्कुल, और ये दिवस के साथ याद आया चंचल, एक और मुख्य दिवस है आज, है दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सितंबर 2023 में इस दिन के आयोजन का फैसला हुआ था, और 9 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित करके 16 सितंबर को ये आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करना, ताकि गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और ये देश पीछे कहीं ना रह जाएं।
0: बिल्कुल, जलवायु की बात होती है तो ओजोन की बात भी होती है, हम विस्तार से इन सब को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें।
1: गीत भी सुनेंगे भाई, साड़ियों का जो लगाव है उससे कैसे हम पीछे
0: अरे
1: छूट
0: हाँ भाई,
1: सकते
0: विषय
1: हैं।
0: बताते बताते हम ये तो भूल ही गए कि आज साड़ियों की बात भी होनी है, तो आज कौन सी खास साड़ी की बात होगी?
1: आज हम करेंगे मोठड़ा साड़ी, आप बताइएगा कौन से प्रदेश से आती है ये साड़ी।
0: जी

0: यशुदास की आवाज़ में बहुत खूबसूरती गीत हम सुन रहे थे, और गीत से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की भी हमने बात की। इन्हीं में से एक है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ओजोन दिवस भी कहते हैं इसे हम।
1: बिल्कुल
0: सूरज की
1: बहुत जी
0: प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है हम, ये हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन जो ओजोन परत है वो जीवन के रूप में से संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। और ओजोन परत गैस की एक बहुत नाजुक ढाल की तरह होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह से ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी बहुत मदद करती है।
1: बिल्कुल। और अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा होती। ये
0: हाँ
1: समताप मंडलीय परत एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूर्य की ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चंचल, ओजोन परत यूवी भी जो नाम के यूवी प्रकाश के जो हिस्से हैं उसे अवशोषित कर लेती
0: बिल्कुल,
1: है,
0: आम बोलचाल की भाषा में अल्ट्रा वायलेट रेज
1: रेज
0: को
1: को भी
0: जानते
1: बोलते
0: हैं,
1: हैं।
0: तो
1: जी
0: वो सीधे हम तक ना पहुंचे इसीलिए बहुत झिल्ली जैसी एक लेयर होती है।
1: हाँ, तो ये कई तरह से कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव हम पर डालती है। और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी ओजोन
0: हाँ
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहा,
1: और इस दिवस का आयोजन करने के कारण भी ये खास है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान खींचना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल। जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ओजोन परत जो है, जो हमारी सुरक्षा कर रही है, उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस बारे में ध्यान खींचा जा रहा है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक गैसों से बचाना है। सबसे ज़्यादा खतरनाक गैसों में कुछ हैं CFC, जिसे क्लोरोफ्लोराइड कार्बन के नाम से हम जानते हैं, हेलोजेनेटेड हाइड्रो कार्बन, और मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि मानवता इस सुरक्षा कवच में छेद कर रही है, यानी कि हम ही लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने इसके प्रति चिंता जताई कि इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनसे जो गैस निकलती है ना, ये वही

0: ऐसे हैं जो इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: बिल्कुल, और जो हमारे जो निजी साधन है परिवहन के, उनका अधिक उपयोग करने से भी बचना है, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल, जो बहुत ही अच्छे ये समाधान है। इससे पहले हम घर में भी काम कर सकते हैं। वो
0: हाँ
1: कैसे कि भाई, अगर आप हर कमरे में एयर कंडीशन चलाकर,
0: जी
1: हर परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग कमरे में
0: जी
1: बैठेगा और हर रूम का अलग अलग एसी चलाएगा, तो बताइए कि कितना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: वो गैस कितनी ज़्यादा हवा में फैल रही है। इसके अलावा आपका भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है। तो दोनों ही नुकसान को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और साथ में बहुत ज़रूरी है कि आप एसी को एक या तो कमरे में चला लीजिए, फिर भी ना संभव है तो कुछ इस तरह से कीजिए कि सारे लोग एक वक्त तो एक ही जगह पर
0: जी
1: बैठें। उसके साथ में बहुत ज़रूरी है कि आप खिड़की दरवाजे थोड़ी सी देर खुले रखिए, स्वच्छ और शुद्ध हवा का आवागमन
0: जी
1: भी घर के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ओजोन परत के बचाव को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके, इसे संरक्षित करने के संभावित उपाय खोजे जा सकें। इसे देश दुनिया ओजोन परत पर बातचीत करती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके।
1: बिल्कुल, और चंचल ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना हमें आज से ही जारी रखना होगा।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लिए हवा पानी ज़रूरी है, सूरज की किरणें भी ज़रूरी हैं, तो सूरज खुद जलकर हम तक ये रोशनी, प्रकाश और बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंचाता है। वो जलता रहे लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे।

0: तो भाई सूरज की सुरक्षा के लिए, यानी कि हम सब सूरज की जब रोशनी हमें मिलती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हम तक ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है,
0: और
1: और हमारे
0: हमारे
1: पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता भी इसी बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण परत है और क्षयकारी पदार्थों का उपयोग कम करना जरूरी है, पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ओजोन परत की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की रक्षा करना है। ये
1: जी
0: लगभग सभी
1: सभी
0: हमारे
1: के,
0: श्रोताओं ने
1: हाँ
0: लिख कर
1: जी हाँ
0: भेजी
1: बिल्कुल इसी तरह के आए हैं। और देखिए ना, जब ये सारी बातें होती जागरूकता की, तो एक चीज़ की और जागरूकता आ जाती है कि जब त्यौहार आ रहे हैं तो
0: है।
1: मन कैसे एकदम जागा जागा सा रहता है, बिल्कुल है ना, खुश खुश रहता है, और घर में सारा चहल पहल लगी रहती है। सुबह जल्दी उठना है कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि कुछ तैयारी करके देर से सोया है, तो कुछ परिवार के सदस्य जल्दी उठ करके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
0: ये देखिए ना,
1: और
0: ये जो सावन का महीना आता है ना,
1: जी
0: इसमें तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर खत्म होते होते फिर ये जो आते हैं गणेश चतुर्थी, और महाराष्ट्र में तो चलिए बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, अब तो देश के हर हिस्से में ये
1: बिल्कुल
0: बहुत धूमधाम से मनने लगा है।
1: जी।
0: इसके
1: और
0: खत्म होते होते कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और यूं जो सिलसिला है ना, अब ये रुकने नहीं वाला है।
1: बिल्कुल, वो इसलिए रुकने नहीं वाला है चंचल, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं, और जीवन में त्योहार ये सिर्फ कैलेंडर पे आने वाली तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं से जुड़े खूबसूरत अवसर होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और हमारे देश में अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये
0: हाँ
1: अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक भावना दिखाई देती है, खुशियां बांटना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना।
0: देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार तो होते ही हैं दीपा, लेकिन एक ही त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल
0: कहीं खान पान का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं पहनावे का, तो कुछ कुछ रीति रिवाजों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें होती मिलती जुलती ही हैं, जो उनका मतलब है, अर्थ है, वो एक ही होता है। अब
1: जी
0: दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपर्व, पोंगल, गणेश उत्सव, नवरात्र, हर त्यौहार का जो है अपना एक अलग रंग होता है, स्वाद होता है, और एक संदेश लेकर भी वो आता है।
1: बिल्कुल
0: त्यौहारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों जो है वो अपने जड़ों से जुड़ती हैं, रीति रिवाजों को जानती हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं वो बड़े प्यार से इन चीज़ों को संजो कर रखते हैं।
1: और त्योहारों की सबसे सुंदर बात चंचल ये लगती है कि इसमें परंपरा के साथ अपनापन जुड़ा होता है। और त्योहार आते ही देखो ना, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, फिर घर भी सजता है, रिश्तेदारों को और मित्रों को हम जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, कहीं पर हम आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं पर हम आमंत्रित हैं, इस
0: जी
1: तरह की बातें भी होती है। और कई बार तो त्योहारों का इंतजार इसलिए भी होता है कि इसी बहाने परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, और फिर वो पुरानी यादों को फिर से जिया जाएगा।
0: बिल्कुल, जब हम दिवाली मना रहे थे तो पिछली दिवाली पर क्या हुआ था ये याद करते हैं,
1: हाँ
0: इस साल जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं तो याद
1: जी
0: करते हैं कि पिछले साल मूर्ति कैसी थी, कौन कौन मेहमान आए थे, किस तरह से धमाल मस्ती हुई, क्या पकवान घर में बनाए गए थे। ये पिछली जो बातें होती है ना, वो यादों की एक फहरिस्त तैयार होती जाती है।
1: बिल्कुल। और परंपराएं केवल पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं होती हैं, इनसे पीछे जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी छिपी होती है चंचल। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश का, विजय का संदेश देती है, होली आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने की सीख देती है, फिर देखिए ना, ईद हमें भाईचारे और साझेदारी का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना हमें जगाता है हमारे अंदर। यानी हमारे त्योहार हमें हर साल याद दिलाते हैं, मानवता, प्रेम और सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: और हमारे एक संदेश में हमें बताया गया है कि त्यौहार हमारी धरोहर और हमारी परंपराएं हैं, हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पूरे साल हम विभिन्न त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाते हैं जो हमारी धरोहर हैं, और हम परंपरा के अनुसार इन्हें मनाते हैं। जैसे इस समय हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, हमने घर में पूजा के कमरे में मिट्टी से बने हुए गणेश जी की स्थापना की है। 11 दिनों तक सुबह और शाम घर के सभी सदस्य आरती में उपस्थित रहते हैं। एक बेटी है जो कि बाहर जॉब करती है, बाहर उसकी पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल के माध्यम से इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है, और यही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है। कई सालों से इस परंपरा को हमारे घर के सभी बड़े निभा रहे हैं, इसे हमने भी कायम रखा है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं ना, कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूंजी के रूप में इन

0: वो सौंप कर जाने वाले हैं।
1: और एक हमारे जो हमारी सखी है उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लिखा है, वो कहती है, आए त्यौहार खुशी की बहार, दीप जले सजे घर के द्वार, रंग बिरंगे उमंगों का मेला, रह न जाए कोई अकेला, मिलकर गाएं खुशियां मनाएं, प्यार का संदेश हम सब पहुंचाएं।
0: तो बस हर दुख छोड़कर हर चीज को भुलाकर हम भी खुशियों की रंगरेलियां मनाएं।
1: चलिए।

0: भाई चंचल, देखिए गम छोड़ना तो चाहिए बिल्कुल, त्योहारों में मिलने का जो असली अर्थ तो वही है। साथ में हम ये परंपराएं क्यों मनाते हैं, क्यों ये हमारी धरोहर है, अपने आने वाली पीढ़ी यारे हमारे बच्चों को ज़रूर इस बारे में बताना चाहिए क्यों विशेष व्यंजन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति के अनुरूप जो जो उस वक्त उपलब्ध होते हैं,
1: जी,
0: चाहे
1: जी.
0: आप धान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, फल सब्जियाँ जो भी उपलब्ध होती हैं उस वक्त प्रकृति के हिसाब से, जो भी वो पैदावार होती है
1: जी
0: उनसे जुड़ी हुई व्यंजन जब बनते हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे

0: क्यों ये बनाया जाता है, इस पे
1: हाँ
0: विचार विमर्श हो, उस पे डिस्कशन घर में बैठ के कीजिए, आप देखिए इतना आनंद आएगा और बच्चों में जो ज्ञान वर्धन होगा उसके बाद वो वाकई में हमारी परंपराओं और हमारी इन धरोहरों की जो असला जो असली जो महत्वपूर्ण इसकी
1: जी
0: महत्ता है उसको समझेंगे।
1: बिल्कुल, बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो चावल के आटे वाला ही मोदक क्यों लगाते हैं, अन्नकूट पर पूजा करते हैं तो क्यों उस समय ये वाली ही सब्जियां बनती हैं। जैसे
0: जी
1: बहुत सारे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो त्यौहार हैं वो भी कृषि प्रधान बहुत सारे होते हैं, बैसाखी है, अन्नकूट है, पोला है, ऐसे न जाने कितने त्यौहार हैं
0: बिल्कुल
1: जो कृषि पर ही निर्धारित होते हैं। जब नई फसल आती है ये अक्टूबर के महीने में,
0: जी
1: तब जो भी फल सब्जियां या धान उगाए जाते हैं उन सबका भोग लगाया जाता है अन्नकूट में।
0: जी
1: इसी तरह से बैसाखी में जब सरसों की खेती होती है, सरसों काटी जाती है, गेहूं कटता है और जो भी अनाज कटते हैं तो उनकी उनकी वो खुशियां मनाई जाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और उन्हीं से ही जुड़ी हुई चीजें बनती हैं घर में, है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: इसी तरह से संक्रांति आती है तो क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है तो तिल का
0: तिल का
1: विशेष रूप से
0: विशेष रूप
1: हम
0: ग्रहण किया जाता
1: जी
0: है, बिल्कुल। और आखिर त्योहार की असली खुशी तभी है ना चंचल, जब हमारे चेहरों के साथ साथ किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आए, तो त्योहार की खुशियां उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इसी तरह से एक संदेश में हमारे श्रोताओं का कहना है कि त्यौहार पहले भी हमारी धरोहर थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, त्यौहार मनाते थे, खूब आनंद आता था। आज क्योंकि एकाकी परिवार हो गए हैं और अलग अलग हो गए हैं सब, लेकिन छोटे परिवार हो गए हैं, त्यौहार हम आज भी मनाते हैं, तो ये बात
0: बिल्कुल
1: सही है। महानगरों में जगह की कमी के चलते एकल परिवार ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार होता है तो भले हम 4 दिन एक साथ ना बैठे लेकिन उस दिन जब त्यौहार मनाया जा रहा है तो घर पर पूरी चहल पहल होती है। वो जो छोटा सा भी घर हो ना तो पूरा मेहमानों से भरा पूरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप और पवित्रता बनी रहे।
1: इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम हम फिर से लेकर आ गए हैं अंतराल के बाद, है ना?
3: जी बिल्कुल। चंचल, सृष्टि की रचना जब हुई, ऐसे हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि तब से इन मनुष्यों ने खास अवसरों पर मिलजुल कर जो कार्यक्रम संपन्न किए वे कालांतर में त्योहारों का उन्होंने रूप ले लिया।

0: किया और आने वाली पीढ़ियों ने नित नए प्रयोग कर उसमें कुछ जोड़ भी दिया और अब ये कहती हैं कि उसी लोग उन्हें ही उसी बातों को ही आधार मानकर एक निश्चित दिन पर ऐसे आयोजनों की परंपरा करते चले आ रहे हैं और हम आज भी पूर्वजों की जो राह है उस पर चलते हुए उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए हम नियत तिथि पर होली दिवाली रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाते चलते आ रहे हैं।
1: और भाई जिस तरह से एक नियमित क्रम चलता रहता है त्योहारों का, हमारे कार्यक्रम में भी हमारी बातें, कुछ जानकारियां और गानों का एक क्रम चलता रहता है, तो गाना सुन ले।
0: चलिए सुनते हैं।
2: ये तो कहो

0: तो भाई जब हम घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे नहीं पूछते हैं कि वो कौन है, क्योंकि हम सबको जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अजनबी चेहरे भी आते हैं और वो भी हमारे चिर परिचित बन जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: सही कहा। और त्योहारों के बीच में जब अगर एक सुंदर सी साड़ी पहनने को मिल जाए ना घर की महिलाओं को, घर की एक महिला को, जो उसके जो चेहरे की मुस्कान जो
0: जी
1: होती है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। और ऐसे में अगर मोठड़ा साड़ी मिल जाए राजस्थान के प्रसिद्ध, तो फिर तो बात ही क्या है।
0: बिल्कुल, और राजस्थान की बहुत कहते हैं ना कि डिमांड वाली साड़ियों में से ये एक है, और लहरिया का ही एक वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा लहरिया होता है ना उससे मिलता जुलता ही ये होता है। लहरिया में बस सीधी सीधी लहरें होती हैं, लेकिन जो मोठड़ा साड़ी है उसमें जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई थोड़ी सी आड़ी तिरछी, और फिर वो चौकोर बन जाती हैं आड़ी तिरछी जब काटती हैं, और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो लहरिया साड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा दी गई हों, और इसी की वजह से इसका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा भरा भरा और आकर्षक लगता है।
1: बिल्कुल। कुछ और खास बातें हैं चंचल इस मोठड़ा साड़ी की, जैसे लहरिया से थोड़ी अलग बनाती है। जिस इसको लहरिया में एक साथ दो रंग होते हैं, पर मोठड़ा में जहां दो रंग मिलते हैं वहां तीसरा रंग अपने आप बन जाता है। जैसे लाल और पीला मोठड़े के बीच में नारंगी आपको दिखेगा, और यही इसका असली आकर्षण भी है।
0: बिल्कुल, और मोठ राजस्थानी में किसी दाने या गांठ को कहा जाता है, और क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसे बांधने के समय गांठें लगाई जाती हैं, और मोटी मोटी गांठें लगाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मोठड़ा साड़ी पड़ गया। और ये साड़ी बंधेज की तकनीक से ही बनाई जाती है, इसमें कपड़े को दो बार अलग अलग दिशा में बांध कर रंगा जाता है, पहले एक रंग में रंग कर सुखाया जाता है और फिर दूसरी दिशा में बांध कर दूसरे रंगों में इसको रंगा जाता है।
1: बिल्कुल। और पहले ये साड़ियाँ सूती कपड़ा माने कि कॉटन में बना करती थी, लेकिन आजकल अब तो शिफॉन में भी बनने लगी है, जॉर्जेट में भी बनने लगी है ये वाली साड़ियाँ। और क्योंकि शिफॉन बहुत हल्की होती है और आप चाहें तो रोज़मर्रा में भी इसको पहन सकते हैं, इस वजह से ही इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा होने लगी है
0: देखो,
1: बाज़ार में।
0: हाँ, लहरिया और मोठड़ा जो है ना ये ज़्यादातर इसी मौसम में पहना जाता है, और ये होते हैं थोड़ी चिपचिपी गर्मी वाले दिन।
1: जी
0: तो क्या होता है कि जो ऐसी हल्की फुल्की साड़ियाँ हों जो हमें तकलीफ़ ना दें, हमें बहुत आरामदायक महसूस कराएं, इसीलिए सूती, जॉर्जट, शिफॉन ऐसे कपड़े में इन साड़ियों की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती
1: ज़्यादा होने
0: है।
1: लग जाती है। और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला रंग भी इसमें है, जैसे कि पिंक रानी, जो गुलाबी
0: हाँ,
1: कलर
0: थोड़ा
1: होता है,
0: गहरा
1: सुर्ख
0: वाला
1: गुला
0: होता
1: सुर्ख
0: है ना, रानी
1: गुलाबी होता है
0: महारानी की पिंक
1: वो
0: जिसे कहते
1: वाला,
0: हैं। हाँ
1: बिल्कुल। और साथ में लाल, पीला, हरे रंग का, एक अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन बहुत
0: हाँ
1: पसंद करती हैं महिलाएं। तो ये गोटा पट्टी वाला मोठरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है राजस्थान के कुछ हिस्सों में। रक्षाबंधन पर जो सोगी की रस्म में गोटा वर्क वाला मोठरा उपहार में भी दिया जाता है।
0: और राजस्थान में मोठड़ा को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दीपा, नई दुल्हन जब पीहर से आती है तो उसका जो पहला सावन का तोहफा आता है उसमें मोठड़ा साड़ी भी कई बार रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह पर तो इसका ज़रूरी भी माना जाता है। सावन, तीज, रक्षाबंधन मैं तो पहनते ही हैं, इसके अलावा शादी ब्याह में भी बहुत पहनी जाती है मोठड़ा साड़ी। और राजस्थान में मान्यता ऐसी है कि सावन में लहरिया मोठड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
1: बिल्कुल। और
0: और
1: एक संदेश आया है, ये कहती हैं कि ये पारंपरिक हस्तकला है राजस्थान की, इसमें कपड़े को एक दिशा में मोड़ने के बाद दूसरी दिशा में भी लहरिया लाइन काटी जाती हैं। साथ में इन्होंने भी यही कहा है कि शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, कोटा, डोरिया जैसे हल्के मुलायम कपड़ों में पहना जाता है। इसमें गोटा पट्टी, जरी, आरी, तिरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर का भी काम किया जाता है, जिससे पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है।
0: अभी महिलाओं को कई बार लगता है ना कि हमारे वार्डरोब में साड़ी नहीं है तो ले ली जाए, कई
1: जी
0: बार हमारा बजट भी हमें लगता है कि रोक देता है, तो ये साड़ी जो है क्योंकि हल्की फुल्की भी आती है और वर्क वाली भी आती है,
1: जी
0: तो 300-400 रुपए से शुरू होकर 4-5 हज़ार तक आप जैसी कीमत में लेना चाहें वैसी साड़ी आप ले सकती हैं इसमें, और प्लेन, गोटा वर्क वाली, और इन्हीं के अनुसार इनकी जो कीमत है वो अलग अलग मिल सकती है बाजार में। जब भी मोटर साड़ी लेनी हो तो थोड़ी सी पहचान जो है इसकी वो कर लें, और पहचान करने के लिए क्या करना है कि असली मोठड़ा जो है वो हाथ से बनाया जाता है, उसके जो रंग की किनारी है वो थोड़ी सी अनियमित मिलेगी आपको, और पीछे की तरफ जो है रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दिखेगा।
1: जी
0: मशीन प्रिंट वाली जो साड़ी होती है उसके पीछे सफ़ेद रंग रहता है, तो थोड़ी सी पहचान करके आप साड़ी लीजिए और बस उत्सवों पर, त्योहारों पर और किसी भी खास मौके पर पहन लीजिए।

0: चंचल देखिए, त्यौहार आए हैं, घर में बहुत साज सज्जा भी कर ली है, बहुत सारी चीज़ें भी बन गई हैं। कुछ आदान प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे तोहफों का?
1: तोहफों का भी होता है, और कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं हमारे पास पड़ोस में वहाँ भी वही उत्सव मनाया जा रहा है, तो कई बार जब बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी कढ़ाई मेरे घर में नहीं है, बहुत बड़ा भगोना मेरे घर में नहीं है, कितनी सामग्री बनाई जा सके, तो वो भी हम पड़ोस के घर से ले लेते हैं कई बार। और बहुत सारी चीज़ें सजावट की भी कई बार आदान प्रदान होती हैं, और जो घर में मेहमान होते हैं उनके साथ में आपसी प्रेम भावनाएं, इनका आदान
0: इनका
1: प्रदान।
0: भी आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आदान प्रदान ये विनिमय प्रथा का एक प्रकार है, जिसमें लेन देन या अदल बदल की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के अलावा अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सखी सहेली, इस फेसबुक पेज पर हमारे द्वारा लिखी कमेंट, उद्घोषिकाएँ हमारी पढ़ती हैं यानी सहेलियाँ पढ़ती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी विचारों का वर्चुअल आदान प्रदान होता है।
1: क्या
0: बिल्कुल
1: बात है।
0: सही कहा आपने भाई, आप अगर संदेश नहीं लिखेंगे तो फिर ये कार्यक्रम की खूबसूरती कैसे बनेगी और ये आदान प्रदान कैसे पूर्ण होगा?
1: और ये बहुत जरूरी आदान प्रदान है, और इसी को लेकर एक और संदेश है। इसमें लिखा गया है कि रिश्ते एक सुंदर आदान प्रदान है, जहाँ कोई अपना समय देता है, कोई विश्वास, कोई प्रेम बांटता है, कोई मौन में भी साथ निभाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों में जीवन की बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं।
0: बिल्कुल। एक संदेश और आया है, वो कहते हैं कि पहले आदान प्रदान पड़ोसी में चीज़ों का होता था, चीज़ों के बीच भावनाओं और विचारों का भी हो जाता था, मन की बातों का आदान प्रदान होता है। ये रिश्ते कभी कभी इतने अंतरिम हो जाते हैं कि अपनी राज की बातें भी हम पास पड़ोसियों से कर लेते हैं। शायद इसी आदान प्रदान से रिश्तों में अपनापन आता है। पर अगर कभी मतभेद हो जाए तो यही राजदार अपनी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आदान प्रदान तो करें, साथ में उन्होंने एक सावधानी दी है कि थोड़ा संभल कर करें, ये हमारा अनुभव है।
1: एक अन्य संदेश में एक बात कही गई है, आदान प्रदान हमारी आवश्यकता भी है, कर्तव्य भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं जहां हमें तमाम ज़रूरतों के लिए एक दूसरे से लेना भी पड़ता है और उनकी ज़रूरत होने पर उन्हें देना भी पड़ता है। हालांकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम चीज़ें अपनी सामर्थ्य से हम खरीद लाते हैं या उत्पादित भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें अक्सर सबसे ज़्यादा आदान प्रदान में लेना देना पड़ता है। जैसा कि हम सब एक शादी में तमाम पैसे खर्च करने के लिए एक दूसरे लोगों से मदद ले लेते हैं, बाद में उन्हें वो पैसा लौटा भी देते हैं, इसी तरह से उनकी डिमांड पर कई बार उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और वो आदमी भी हमें बाद में भुगतान कर देता है। तो बिल्कुल इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो रिश्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम का जो तालमेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए गाना सुन लेते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: भाई हमने बहुत सारे त्योहारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आदान प्रदान की बात भी कर ली, जो त्योहार हमारे धरोहर हैं परंपरा इनकी बात भी कर ली, हम क्या पहनेंगे मोठड़ा साड़ी उसकी बात भी कर ली, लेकिन अभी तक खाने पीने की कोई बात नहीं हुई।
1: अरे भाई हो रही है ना, देखिए मोदक बनेंगे, बहुत प्रकार के मोदक होते हैं, तो जिसमें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कि उकड़ी चे मोदक होते हैं जो कि भाप में पके हुए सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक मोदक हैं।
0: और ये उकड़ी चे मोदक यानी कि चावल के आटे के मोदक होते हैं जो खास तौर पर महाराष्ट्र में इन्हीं मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा
1: जी
0: को।
1: ये बता रही हैं कि चावल के आटे के आवरण और ताजे नारियल गुड़ की भराई वाले ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं। उसके अलावा तले हुए मोदक भी होते हैं, इन्हें गेहूं के आटे या मैदे से बनाकर तेल घी में आप तल के बना सकते हैं। फिर मावा यानी कि जिसे खोया बोलते हैं वो मोदक भी होते हैं, तो इसमें चीनी और मेवों को झटपट तैयार किए जाने वाले ये मोदक होते हैं, मतलब अंदर जो फीलिंग है वो मावे के साथ चीनी और सूखे मेवों की होगी। और बेसन के भी मोदक बनते हैं जिसमें भुने हुए बेसन और घी से लड्डू की तरह बनाए जाने वाले मोदक होते हैं। चॉकलेट मोदक भी होते हैं जिसमें चॉकलेट के स्वाद वाले आधुनिक और इंस्टेंट मोदक बनाए जाते हैं। साथ में हमारी सखी बता रही हैं कि ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं जिसमें अंदर जो भरावन है वो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता इन सब का भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रकार बता दिए।
0: इसी तरह से प्रकार ही बताने के लिए एक और संदेश आया है और इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं, सभी के घर में मोदक का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए मोदक अलग अलग तरह के स्वाद में नजर आते हैं। चावल के आटे के आवरण वाले नारियल की गुड़ की भरावन वाले मोदक होते हैं, तले हुए मोदक में मैदे गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और भरावन नारियल या ड्राई फ्रूट्स की जाती है और ये घी में तले जाते हैं। मावा मोदक भी बनते हैं जिनमें मावा चीनी और मेवे से के मिश्रण से इन्हें बनाया जाता है। चॉकलेट मोदक जो है बच्चों के बड़े लोकप्रिय होते हैं जो चॉकलेट और मावा से बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के मोदक में काजू पिस्ता बादाम इस तरह की चीज़ों से इनको बनाया जाता है। तिल और गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं और तिल गुड़ से पारंपरिक स्वाद वाले मोदक बन जाते हैं। खोया पनीर या दूध वाले मोदक भी होते हैं जो दूध से बनी सामग्री से तैयार किए जाते हैं।
1: जी हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोदक के कई प्रकार होते हैं पर हम कैसे बनाते हैं, वो बता रही हैं कि हम मावा में सभी प्रकार के सूखे मेवे डालकर और चीनी मिलाकर घी में तलकर बनाते हैं। अगर चीनी मावा में न डालें तो इसकी चाशनी बनाकर मोदक को घी में तलकर इसे चाशनी में डाल देते हैं और मोदक को चाशनी में लपेट देते हैं, तो वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं इनके घर में, इस तरह से हमारी सखी ने लिखा है। और साथ में बता रही हैं कि बच्चों और युवाओं के बीच में ये चॉकलेट मोदक है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चॉकलेट और बिस्किट का या फिर नट्स जो आप सूखे मेवे हैं उसका मिश्रण भरकर मोदक का आकार दे सकते हैं। फिर एक मोदक का प्रकार बताया है रसवंती या रसमलाई मोदक। इसमें ताज़े पनीर मिल्क पाउडर चीनी और केसर पिस्ता के मिश्रण से बनने वाला है ये मोदक, बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा मावा और पनीर मोदक भी बनता है जिसमें मावा और यानी खोया चीनी इलायची पाउडर मिलाकर आसानी से जो मोदक का मोल्ड होता है ना उससे उसकी मदद से बन जाता है। फिर एक और है जिसमें कि बेसन सूजी वाला, जैसे कि हमारी एक और सखी ने लिखा था कि बेसन और बारीक सूजी को घी में भूनकर और चाशनी या बूरा मिलाकर सांचे में आप इसे तैयार कर सकते हैं।
0: तो चलिए ये तो हुई बहुत सारे मोदक की बात, अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: चलिए

0: श्रोताओं, विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 तक ईपीएफओ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान निर्णय इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ा देता है, जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वेतन वृद्धि, बढ़ती आय और औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले 2 दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो, ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
1: नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया। इसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री लियोनपो डी एन ढुंगियल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। इसका उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
4: छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था, और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी।
5: क्या
4: वो अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो
5: जी।
4: तो मुझे लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।
5: क्या बात है।
4: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
5: आपने जिक्र किया अंशु जी का, जो आपके पति हैं, और वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा?
4: मैं सच बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूँ उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता, वो होते होंगे अपनी कार्यशैली में डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो मतलब अगर मैं बात कहूँ तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा। उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट नाम से एक साहित्यिक पत्रिका वेब पोर्टल जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है वो हमने शुरू किया था। वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने उनकी सहायता से आरंभ किया था
5: जी।
4: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क

0: वो नहीं है बिल्कुल भी, और अनुशासित है।
1: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बातचीत में, क्योंकि हमारी भी मुलाकात हो चुकी है और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहाँ पे आपका लेखन है वहां पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: तो सुनते हैं घर फिल्म का ये गाना।

0: गाने के बाद मनीषा जी हम आपकी साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं. आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है. तो कहाँ से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है. हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं. कैसे आपके जहन में ये विचार आया? विस्थापन की बातें हैं इसमें.
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूँ तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है.
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहाँ के अनुभवों को देखना हुआ. तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है. तो जब वहाँ से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है. जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर. तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी.
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे. उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी. वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे. और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था तब. पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए. ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए. लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य एकेडमी की एक कार्यशाला हुई
0: थी. अभी युवा लेखक हैं आप. कोई कह नहीं सकता कि आप.
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ. तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और वो ब्लॉग का जमाना था तो ब्लॉग पे काफी चीजें, मेरे को लगता था कि ब्लॉग को एक फॉर्म बना के शिगाफ नाम से उपन्यास लिखा जाए. तो मैंने उसको लिखा दो सहेलियों के बहाने से.
0: तो और ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ. लोगों ने इसे एक पाठशाला की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके और हम सबके बाद की पीढ़ी के युवा लेखक आते हैं तो वो उपन्यास लिखने के लिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ. कि मैंने भी उसे इसलिए पढ़ा कि देखती हूँ उपन्यास लिखने की शैली कैसे होती है और उसमें से क्या कुछ सीखा जा सकता है. तो मेरे लिए भी बहुत ये बड़ी बात है और इस उपन्यास को मैंने भी बहुत पसंद किया है. अब हम आपके उपन्यास स्वप्नपाश की बात करते हैं जो मानसिक तनाव की और एक तरह से मानसिक रोग की बात भी है उसमें.
1: बिल्कुल.
0: तो कैसे आपने लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहाँ से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिज़ोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी.
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे डॉक्टर दीक्षित, तो उन्होंने पूछा क्या तुम जानती हो सिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है. मैंने कहा नहीं. तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
0: जी.
1: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं. एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा, या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं. तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए. क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं. तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की. तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली. मैं एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था. उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे. तो वो अपने आप से बात करता था. हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग, उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था. तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं. तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया, उसमें डबल छपाई आ जाती है. तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं. तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा, तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया.
0: जी जी.
1: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत ब्रिलियंट, बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होता है. अगर हम देखें तो बहुत सारे पेंटर्स वॉन गॉग सहित सिज़ोफ्रेनिया के शिकार रहे हैं. तो तब मैंने उसको एक पेंटर बनाया और उसके जीवन को लिखा. तो ये लिखना मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, इतना आसान नहीं था.
0: और पढ़ना भी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो कुछ घटनाएं बहुत लोमहर्षक, मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या. जैसे वो बचपन की जो कुछ बातें उस कैरेक्टर की, लड़की कैरेक्टर है, उसके बचपन की यादें जो आपने ताज़ा की करवाई, कि मतलब डॉक्टर पूछ रहा है सवाल और वो अपनी यादों में जाती है, तो वो सब भी लगता है कि वो लड़कियों के साथ अमूमन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पुरुष किसी न किसी बहाने स्पर्श करते हैं, तो वो बड़ा त्रासद होता है, तो
1: अवांछित स्पर्श.
0: हाँ, और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास. ऐसे ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा है, जिसमें स्त्री पात्र हैं, तो क्या स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती हैं?
1: बिल्कुल. मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं, कि हम सिमोन द बोवार और वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट जो पाश्चात्य उसमें हुई हैं दार्शनिक, तो हम उसको हूबहू भारत पे लाके लागू कर देते हैं. वहीं मैंने एलिस वॉकर को देखा, उन्होंने कहा कि हम लैटिन अमेरिकन औरतों का फेमिनिज्म पाश्चात्य आधुनिक स्त्रियों से अलग है, क्योंकि हम नाचना पसंद करती हैं, हम श्रृंगार करना पसंद करती हैं,
0: और गहने
1: पहनना. और वहां पे अगर पाश्चात्य बिल्कुल यूरोपियन अगर हम फेमिनिज्म की तरफ देखें, तो वहां तो वो सजने को पुरुष के लिए मान लेती हैं. तो मुझे लगा कि हमारा अपना फेमिनिज्म कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में भी रहा होगा. ऐसे ही तो नहीं हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी या लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां हुई हैं. तब

0: आपके पाप धुल जाते हैं। ये स्त्रियां कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इन सब के पैरेलल मैंने आधुनिक स्त्रियों को गढ़ा और इस उपन्यास को लिखा। तो ये मेरा शिगाफ के बाद दूसरा उपन्यास था जिसे लिख के मुझे संतुष्टि हुई।
1: जी, और आगे भी उपन्यास की यात्रा जारी है। यहाँ पर हम एक विराम देते हैं और एक गाना सुनते हैं। कौन सा?
0: बिल्कुल, एक गाना मुझे गृह प्रवेश फिल्म का बड़ा पसंद था।
1: हाँ।
0: आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के खुदा होते।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना।

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता, मैं यकीन नहीं करूंगी मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहती
0: क्या
1: थी
0: बात है
1: लेकिन पापा के एक थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था। और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ, चित्तौड़गढ़ से,
0: जी
1: तो जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा। तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को

0: थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैंने अपना विशारद पूरा किया।
1: जी
0: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बात है कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे, तो
1: जी
0: मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया।
1: जी तो बात कथक की चली है, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूँ और कोई बड़े आयोजन में भाग लूँ, हिस्सा लूँ?
0: वही बात फिर यायावरी की आ जाती है ना,
1: जी
0: कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि 3 साल हो, मतलब मेरे को सीखते हुए 6 साल हो गए,
1: हाँ
0: तो ट्रांसफर का फरमान आ गया। और होता ही है कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक एकल तो होता ही है, और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती हैं। तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया। लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: वाह।
0: मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी, तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो, जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो। तो तब तक मैंने, जब तक विशारद किया, मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास, बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी। और अगर मैं कहूँ कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजू लय।
1: जी
0: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू और समीक्षा और कलात्मक समीक्षा, कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया।
1: जी
0: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी। तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
1: पूरा हुआ
0: वो
1: यहाँ पर।
0: लेखन की तरफ चला आया, और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
1: बिल्कुल, और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते। और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से, और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहाँ पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे, क्योंकि बात कथक की चली है, और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो फिर
0: हाँ,
1: अधूरा सा
0: मुझे
1: लगे।
0: आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला के डांसेस देखती ही रह जाती थी। और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओं में
1: क्या
0: दिन
1: बात
0: रैन
1: है,
0: गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुनाती होंगी, और हमने सुना है अगर ये गुनगुना के आप सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा
0: ये
1: लगेगा।
0: तो बहुत ऐसा क्लासिकल गाना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नी

0: मनीषा जी, आपकी कौन सी कृति आपके सबसे दिल के करीब है?
1: निश्चित तौर पे मल्लिका।
0: मल्लिका। हाँ, हम जानते थे क्योंकि साहित्य की दुनिया में, अपने श्रोताओं को बता दें जो साहित्य में दखल नहीं रखते, कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को इन दिनों साहित्य की मल्लिका कहा जाता है।
1: अरे,
0: तो आप मल्लिका के बारे में बताइए, कहाँ से इंस्पायर हुए, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था। उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है, उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी, तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े, तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में, और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की, और लगातार भारतेंदु जी के साथ में वे बनी रही। तो उनका एक फोटो भी उसमें छपा करता था, बड़ी बड़ी आंखों वाली एक हल्की सी उदास स्त्री जो बाल विधवा रही थी। तो मुझे मल्लिका के इस चरित्र ने सालों सालों सालों हॉन्ट किया, मेरे अंदर रही और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने, श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में ये हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था, उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा। तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा, जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े, और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में, स्वतंत्रता से पहले, उस समय में इतनी सुलझी हुई और खुली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं मल्लिका के जीवन पे लिखूं, लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि मल्लिका का बचपन, मल्लिका के बनारस आने से पहले का जीवन किसी को कुछ नहीं मालूम था, वो सब मुझे कल्पनाओं से और थोड़े तथ्यों से बुनना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो बंकिम जी के ही कुल से कहीं दूर से संबंधित थी, तो मैंने उसमें बंकिम जी को भी एक पात्र के तौर पर रखा और मल्लिका काफी करीब उनको बताया कि मल्लिका उनसे प्रेरणा लेती थी। और मजेदार ये बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बंकिम के उपन्यासों का मल्लिका की सहायता से अनुवाद भी। और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया, उपन्यास, क्योंकि अपने यहाँ बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
0: क्या बात है, ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता सकता है।
1: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए, जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले, और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पे विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
0: गजब, क्या बात है।
1: तो ऐसे ऐसे, अगर मैं कहूँ कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया। निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
1: सबसे पहले तो कठपुतलियां ही, जिसे मेरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है
0: जी।
1: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है और वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए हैं, और उसकी विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है वो उसे मिलती है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलेन है। तो वो लिखने में मुझे आनंद आया क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ। मैंने वो आंधियाँ देखी हैं, पीली आंधियाँ जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियाँ घिर जाती हैं और खो जाती हैं।
0: क्या बात तो है, राजस्थान में,
1: राजस्थान। तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी, मैं वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे। तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियाँ लिखा, और खाप पंचायतों का दौर था तो वहाँ पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्ज़ाम लगता है और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है, तो वो मैंने रचा, एक आंधी का दृश्य रचा। तो कठपुतलियाँ मेरी आरंभिक कहानियों में से है। तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं। तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो, जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है जिसको साइड वाइंडर कहते हैं, तो वो सांप क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है वो टेढ़ा टेढ़ा चलता है।
0: क्या बात है।
1: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं, और कोई भी दृश्य रचें तो हमेशा कहा जाता है ना कहानी लिखिए नहीं दिखाइए, तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूँ कि कहानी को दिखाया जाए।
0: क्या बात है। तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक बन गई हूँ और आपकी कहानियों को याद कर रही हूँ, वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारे लेखन की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक मास्टरपीस है ये बातें, और पाठशाला की तरह ये, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है। तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे। या अब हम आपके इस पर आते हैं शाल भंजिका, तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको लिखने की।
1: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक प्रेम कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी। इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई क्योंकि मेरे पास
0: मुश्किल होता है प्रेम कहानी लिखना।
1: रविंद्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा। तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे। तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र। तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं, और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है। और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं, बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है जो उर्वरता का प्रतीक है। इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है।
0: अच्छा।
1: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं, तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो। तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका शीर्षक आया है
0: जी। और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपके आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती हैं। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ।
0: क्या बात है, हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना।

0: मनीषा जी, एक साहित्य के अलावा आप में जो गुण हमें दिखाई देता है बतौर एक पाठक और सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके भीतर एक यायावरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है सच होगी। और आप विदेशों की यात्रा बहुत की है, वहां से भी कुछ उपन्यास आपने जहन में लाया है। त्रिमाया और किनाया की हम बात करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ममता, मेरी देश में जो एक खास किस्म की यायावरी रही, तो हुआ ये कि मेरे लास्ट जो 3 पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
0: अच्छा।
1: जल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी, और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग। शिलोंग में खासी समाज था जहाँ पे मातृवंशी प्रणालियां होती हैं, वहाँ स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है उस सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहाँ नायर समाज था जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशी प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशी समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशी प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
0: जी जी।
1: जैसे नायर जो मातृवंशी प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया

0: बर्तानवी नैतिकता जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतुलक्ष्मी के हस्ताक्षर से मातृसत्ता समाप्त कर दी गई।
1: जी जी,
0: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशी प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं, लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
1: जी,
0: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मातृसत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को त्रिमाया उपन्यास में लिखा। तो एक तो यायावरी मुझे यहाँ काम आई। और
1: यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही हैं इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहाँ से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहाँ से? दूसरी बात कि ये कितना चुनौतीपूर्ण था ये?
0: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं जल्दापारा में थी, वहाँ रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का, तो वहाँ पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में, मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूं। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरे एक सूंड है।
1: जी जी जी,
0: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती है,
1: क्या बात है।
0: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरीटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं, उसको बर्फ के नीचे जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
1: क्या बात है।
0: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोध परक है, स्वप्नपाश भी, मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
1: बिल्कुल, तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे, और ये तो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना कैसे, ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर उसके मन में घुस के
0: परकाया प्रवेश।
1: और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका जो यायावरी पर ही, किनाया
0: जी,
1: और विदेशों की यात्रा के दौरान, उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
0: नहीं, वो घुमक्कड़ी वो अलग है, वो घुमक्कड़ी अंग्रेजी साहित्य के गलियारों से, वो तो यात्रा वृत्तांत ही है। लेकिन किनाया मैं तुर्की गई थी, तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों को बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ जो कि एक पर्यावरणविद है, वो सॉल्ट लेक पे काम करती है, वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी। तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी। तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा, और शाम को जम के डांस करते थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी, आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम्हें हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा आप सब तो मिडिल एज्ड हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं तुर्की की जो यात्रा थी,
1: हिस्सा आपकी किताब में भी है
0: बिल्कुल, तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है, और वो जो मनोविज्ञान है उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूचे आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा और दो मध्य वयसीय, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम जिसको हम सच में जिसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
1: उस प्रेम से मतलब वो देह से आगे है, वो प्रेम हमें लगता है
0: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरह की खींचतान नहीं है जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं, वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है, एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है वो उसकी है कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।
1: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी, और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है, तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है, हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। तो मेरे ताऊजी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं,
1: तो जो रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं,
0: रेडियो से जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं,
1: शुक्रिया
0: मनोज कुलश्रेष्ठ उनका नाम है, तो
1: सखी
0: सहेली उनका प्रिय कार्यक्रम है।
1: जी जी।
0: तो उन सबके सानिध्य में मैं रही बचपन से, पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही घर में, कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ज़मीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने ज़मीनी काम किए हों और मैंने कहीं ज़मीन पे कोई आंदोलन किए हों, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे तो उसके बहाने मेरा एक काम चलता रहता है, और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है, और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ, और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है। तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट रहे हैं।
1: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहाँ कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ का,
0: तो वो एक अलग मुहिम थी। हुआ ये कि 3 बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी 2 बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है, तो जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए। और मजेदार बात यह कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है और उनको ट्रस्ट चला रही है, और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है वहां पे, बिल्कुल माहौल बनाया जाता है कि आप जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के, वो वस्त्र पहने हुए,
1: अच्छा,
0: और जेन ऑस्टन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया, मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नॉर्दर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की 3 बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके जितने संभव हो सकते थे, थॉमस हार्डी तक, सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी, साहित्य के गलियारों से।
1: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी?
0: पहली बार तो मैं घूमने गई थी, और संयोग से मैं जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी। तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए। तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए, फिर वो जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
1: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली है, जहाँ पर लोक संस्कृति लोक कला बेशुमार है, आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
0: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं, कठपुतलियां, कुर्जा, स्वांग, ठगिनी, सब में राजस्थान आया है। किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से, सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं। तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
1: क्या बात है, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और
0: गाना? हाँ, तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो सात
1: हिंदुस्तानी,
0: हाँ बिल्कुल, पीतल की मोरी गागरी। चलो
1: तो चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना।

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां होंगी,
1: ज्यादा ही है ममता, 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया वन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा मिली, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं।
0: जी जी,
1: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां हैं उसमें हैं। तो चाय बागानों में मैं बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी, तो वन्या में वो कहानियां हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं।
0: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
1: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी।
0: जी, और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं, मनीषा जी के 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी, पढ़ाई के दिनों में शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
1: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
0: अच्छा,
1: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
0: जी।
1: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था।
0: जी, मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला तो, लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा। फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे, इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे श्रोताओं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं। समय हो गया है आज की पहली सभा के कार्यक्रमों को यहीं पर समाप्त करने का। अब से 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे हम दूसरी सभा लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दे, नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं मीना स्वागत करती हूँ आज की दूसरी सभा में। सभा शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की इस दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ ही समय में यानी कि शाम 6:05 पर स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को आरंभ करती हुई सबसे पहले आपको सुनवाएंगे मार कार्यक्रम के अंतर्गत मार आधुनिक गीत रखिल ललतुकमोय टूलोर और उनके साथियों की आवाज में। शाम 6:25 पर जेमी कार्यक्रम के तहत जेमी लोकगीत आप सुन पाएंगे लुंगबुइले जेमे और उनके साथियों की आवाज़ में।

शाम 7 बजे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाएंगे डिमासा कार्यक्रम के अंतर्गत डिमासा लोकगीत निर्मला बठरी और उनके साथियों की आवाज में। शाम 7:20 पर कार्बी कार्यक्रम के तहत कार्बी आधुनिक गीत आप सुन पाएंगे क्लैरिस क्रोपी और उनके साथियों की आवाज में। शाम 7:40 पर आप सुन पाएंगे कुकी कार्यक्रम के तहत कुकी आधुनिक गीत लुनखोलम सिंगसन और उनके साथियों की आवाज में।

रात 8:45 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी संध्यार आंचलिक बातुरी। माफ कीजिएगा, रात 8:45 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी समाचार संध्या।

और श्रोताओं, आज की आखिरी पेशकश रहेगी कार्यक्रम चित्रगीत रात 9:30 पर। श्रोताओं, ये थी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का हाफड़ंग केंद्र है।

आइए आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मार कार्यक्रम के अंतर्गत मार आधुनिक गीत रखिल ललतुकमोय टूलर और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे ललतुकमोई टुलर और उनके साथियों के गाए मार आधुनिक गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है मार कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए प्रारंभ करते हैं जेमी कार्यक्रम। सुनते हैं जेमी लोकगीत लुंगबुइले जेमी और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, लोंगबुइले जेमी और उनके साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ ही जेमी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे संध्यार आंचलिक बातोरी।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले की गए संध्या आंचलिक बातुरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: आइए अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं डिमासा कार्यक्रम के अंतर्गत डिमासा लोकगीत निर्मला बठरी और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्बी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं कुकी कार्यक्रम। सुनते हैं कुकी आधुनिक गीत हुनखोलम सिंगसन और उनके साथियों की आवाज में।

0: श्रोताओं, लुंगकॉम सिंगसॉन और उनके साथियों के गाए इसी आधुनिक गीत के साथ ही कुकी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: आपकी गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: आइए आरंभ करते हैं फिल्मी गीतों के सफर को और सबसे पहले आइए सुनते हैं गीत कविता सेठ की आवाज़ में,

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक ही फिल्म के गाने, और आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म अग्निपथ 2 के कुछ बेहतरीन गाने। तो आइए, सबसे पहला गीत हम सुनते हैं उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

0: श्रोताओ, सुनने निगम की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है एक ही फिल्म के गाने। ये आकाशवाणी का हफड़ केंद्र है। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएंगी समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
3: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
5: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
6: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने।
1: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
7: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
1: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
8: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
10: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखी गए समाचार संध्या। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
12: हेलो हाफलॉन्ग।

0: आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग,
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही नेपाली गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए आरंभ करते हैं चित्रगीत कार्यक्रम। और आज के चित्रगीत कार्यक्रम में सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: नाटकलेकर नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई च तो भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

श्रोताओं, जगजीत सिंह के गाए इसी गीत के साथ ही आज का चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। आप सभी कल सुबह पहली सभा के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। इसी के साथ मुझे यानी मीना को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।